मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मौफी के नाम था हीरो नंबर वन फन्नेट। और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

और ए दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

ये शिपर थे साथे यार किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक दुएत के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नाइटिंगेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं।

थोड़े नजरों से थुकई दिया है, प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में, तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है, और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैती जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बस बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

कोई सूरत है हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिकेरा नाम है इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: हमको शिक

खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एंजन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म में है राही बदल गए, इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

इनकी बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिलके ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियन त्रियन तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियन त्रियन तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियन त्रियन तक में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर।

0: मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाइए मेरे प्यार में क्या वफा न थी। यहाँ क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात।
1: जवान तुम हो, जवान हम हैं।

शंकर जय किशन के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं, ये है, इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

कि हम आधा आधा लता जी और अपनी किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश की बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म, इस तरह से।

फिल्म हंस दे जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज़ में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है इस तरह से, ये डुएट है उन्हीं गोमी के साँच पर।

नरम दिल ने फरियाद किया। ये ओपी इस्लाम म्यूजिक नहीं है, सोनी भूमिका है।

0: रफ़ी साहब आयशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतीं से सस्त खा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश किए ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाए आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है,
1: सुंदर भी लगे।

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आजा रे आजा सनम। आपको सुनाया गया फाव हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग इस तरह से।

0: मैं चला जाऊंगा दो अश्क बहा लूं, तो चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, ये धमाकादार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में ये झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

प्रेमी भक्तों, माता की चौथा रूप कुष्मांडा देवी आगे इस भजन के माध्यम से सुनिए।

रात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, घट स्थापन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त व्रत पूजा महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक वर्ष जो कि नवरात्रि का व्रत 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि में जो कि चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और वहीं पर गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तिथि तक माता 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, तो माता दुर्गा की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्टों का नाश होता है, तथा माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करती है। नवरात्रों के आरंभ में जो कि अमायुक्त प्रतिपदा अच्छी नहीं होती है। आरंभ में घट स्थापन के समय यदि चित्रा और वैधृति हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि चित्रा में धन का और वैधृति में पुत्र का नाश होता है। घट स्थापन समय जो कि प्रातः काल है, अतः उस दिन चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहे और रात्रि में नवरात्रों का स्थापन या आरंभ होता नहीं, तो या तो वैधृति आदि के आद्य 3 अंश त्याग कर 4थे अंश में करे, या मध्याह्न काल के समय अभिजीत मुहूर्त में स्थापन करे। स्मरण रहे कि देवी का आवाहन, प्रवेशन, नित्यार्चन और विसर्जन ये सब प्रातः काल में शुभ होता है, अतः उचित समय का अनुपयोग न होने दे। स्त्री हो या पुरुष, सबको नवरात्र करना चाहिए। यदि कारणवश स्वयं न कर सके तो प्रतिनिधि, पत्नी, पति, ज्येष्ठ पुत्र, सहोदर या ब्राह्मण द्वारा कराए। नवरात्र 9 रात्रि पूर्ण होने पर पूर्ण होता है, इसलिए यदि इतना समय न मिल पाए तो सामर्थ्य ना हो तो 7, 5, 3 या 1 दिन व्रत करे, और व्रत में भी उपवास, अयाचित, नक्त व्रत या 1 भुक्त हो, जो भी बन सके अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत को धारण करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में जो कि माता दुर्गा के 9 दिनों तक 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिताः। इन 9 देवियों का जो कि नवरात्रि में 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2024 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:52 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:32 पे। तो शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को चैत्र नवरात्रि घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। 9 अप्रैल को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा वह समय सुबह 4:31 से लेकर के सुबह 5:17 तक होगा। इस दिन योग जो कि अमृत सिद्धि योग और सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 7:32 से अगले दिन सुबह 5:06 तक होगा। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। 9 अप्रैल को नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र होगा सुबह 7:32 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। इस दिन योग जो कि वैधृति योग होगा दोपहर 2:18 तक, उसके बाद विषकुंभ योग होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय जो कि 9 अप्रैल को सुबह 11:34 से लेकर के दोपहर 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त का समय होगा। राहु काल का समय जो कि दोपहर 3:09 से शाम 4:43 तक होगा। अब आइए जानते हैं घट स्थापन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन सबसे अच्छा मुहूर्त जो है
वह मुहूर्त 9 अप्रैल को जो कि अभिजीत मुहूर्त का समय होगा, इस समय में घट स्थापन का कार्य संपन्न करें, जो कि सुबह 11:34 से दोपहर 12:24 तक घट स्थापन का विशेष मुहूर्त होगा। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय चर लाभ और अमृत, जो कि सुबह 8:50 से दोपहर 1:34 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय शाम 7:43 से रात्रि 9:09 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 10:34 से रात्रि 2:50 तक होगा। घट स्थापन में जो कि खास करके चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग में घट स्थापन नहीं करना चाहिए, इस कारण से खास करके जितने भी भक्तजन घट स्थापन का कार्य करने वाले हैं वो सभी अभिजीत मुहूर्त में ही घट स्थापन का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। चैत्र नवरात्रि के व्रत में जो कि आप चाहें तो 9 दिनों तक माता का पूरे विधि विधान के साथ फलाहार रह करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन भर फलाहार का प्रयोग करके रात्रि में एक समय जो कि सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए और गौ घृत का प्रयोग करते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या आप चाहें तो सूर्यास्त होने से पहले ही फलाहार आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, उसके अनुसार आप व्रत को धारण कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ जो कि घट स्थापन करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से माता का पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल आदि से माता का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जल से आचमनी करानी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए और फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता भगवती माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और पूर्ण अपना मन माता भगवती माता दुर्गा के चरणों में लगानी चाहिए। इनका ध्यान भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। इससे माता जगदम्बा दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।

और कौन आए हैं तो नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये नवरात्रि माता का गीत हम आपको भजन आपको हम सुनाते हैं। चलो एक और सुना जाए।

देवी सर्वभूतेषु और ये माता का मंत्र दोस्तों आपको हम सुनाते हैं और वो है नवरात्रि के और पर तो हम चलते हैं बोलते चलो और शेरावाली के बोलते चलो।

और बोलते चलो और बोलते चलो शेरावाली की, और बोलते चलो हम चलते हैं शेरावाली के आरती की ओर दोस्तों, और आपको नवरात्रि का सॉन्ग हम सुनाएंगे। अब चलो आरती की ओर, नवरात्रि की माता जी के आरती की ओर।

गौरी। और दोस्तों दुर्गा माता की आरती सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे हैं नवरात्रि की ओर से। तो अगला गीत अगला भजन की ओर हम चलते हैं।

रात्रि आओ नवरात्रि का ये भजन आप लोग को हम माता का हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के तमाम डायरेक्सी कोलेगा जाती सबके ओर से आप सबको एक शुभ शौर शुभ नवरात्रि होए और आप जहाँ भी हो जिस हाल भी हो माता आपको और हर तरह कहिए शक्ति प्रदान करे आपकी मदद करे आपके दुख निवारे इस नवरात्रि पर हमारे दोस्तों। तो आप लोगों को शुभ शुभ शुभ एक शुभ दिन हो नवरात्रि जोंग। यहाँ से हम शुरुआत फिर से करते हैं।

और तेरे दरबार में मैया खुशी तो जरूर मिलते हैं। और दोस्तों नवरात्रि का ये स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और यानी हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं यानी कि नवरात्रि सॉन्ग की ओर। नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और तेरी महिमा है अपरंपार माँ। और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। और वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जो है।

वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाए गए हैं। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

ये अम्बे माँ नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए।

मेरे अम्बे और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

और कौन आए हैं तो नवरात्रि के उपलक्ष्य पर ये नवरात्रि माता का गीत हम आपको भजन आपको हम सुनाते हैं। चलो एक और सुना जाए।

देवी सर्वभूतेषु और ये माता का मंत्र दोस्तों आपको हम सुनाते हैं। अब वो है नवरात्रि के और पर तो हम चलते हैं बोलते चलो और शेरावाली के बोलते चलो।

ஒரு போல் திச்சலோ, ஒரு போல் திச்சலோ ஷேராவாலி கி, और बोलते चलो हम चलते हैं शेरावाली के आरती के ओर दोस्तों, और आपको नवरात्रि का सॉन्ग हम सुनाएंगे। अब चलो आरती के ओर, नवरात्रि की माता जी के आरती के ओर।

गौरी। और दोस्तों दुर्गा माता की आरती सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे हैं नवरात्रि के ओर से। तो अगला गीत अगला भजन की ओर हम चलते हैं।

रात्रि आओ नवरात्रि का ये भजन आप लोग को हम माता का हम सुनाते हैं। रेडियो फाहुन के तमाम डिरेक्सी कुलेखा जाती सबके ओर से आप सबको एक शुभ नवरात्रि होए। और आप जहाँ भी हो जिस हाल भी हो माता आपको और हर तरह के शक्ति प्रदान करे, आपकी मदद करे, आपके दुख निवारे इस नवरात्रि पर। हमारे दोस्तों

भक्त वत्सला माता वैष्णो देवी सदा सबकी पुकार सुनती हैं। राजा चंद्रदेव पर टूटा दुख का पहाड़। पहाड़ों वाली माता ने राजा और उसकी पुत्री का दुख हर लिया। उनके वरदान से पुत्री का निष्प्राण सुहाग जीवित हो गया। पुत्री के व्रत से मां प्रसन्न हो गईं। राजा की श्रद्धा भक्ति अष्टभुजाधारी मां ने स्वीकार कर ली। वैष्णो माता का द्वार पावन द्वार है।

नवरात्रि करने वाले की जो नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं और मंदिर को जा रहा है, आज हम कुछ भजन चलाएंगे, एक घंटे नवरात्रि का भजन चलाएंगे, उसके बाद हम कुछ गाने आप लोग के जरूर सुनाने वाला हूँ। जहाँ जहाँ पे ये आवाज़ पहुँचे, एक बार फिर से हमारा प्यार भरा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, ढेर सारा दुलार पहुँचे। मैं दो हफ्ते नहीं थे क्योंकि कुछ आवाज़ में कुछ गड़बड़ी थे, कुछ थोड़ा सा पीड़ा था देह में, ऐसे इसलिए मैं दो हफ्ते नहीं थे। आज से मैं प्रोग्राम फिर से शुरू करूँगा, एक बार फिर से हर एक को हमारा नमस्कार। चलो दोस्तों, आप लोग के सुनाते हैं कुछ भजन है नवरात्रि, जो भी अपना पूजा कर रहे हैं, नवरात्रि कर रहा है, हर एक नवरात्रि करने के वाले के हम शुभ नवरात्रि कहते हैं। माता रानी आप हर एक को ज़रूर देखे गए, और जितने ही पुकारेंगे उतने ही माता रानी आप लोग की ज़रूर देखेंगे और सुनेंगे। हर एक मंदिर खुला है दोस्तों, मंदिर के टाइम है, जाइए, मंदिर भी है नवरात्रि में, जहाँ जहाँ मंदिर है हर मंदिर खुला है, आपको वेलकम है। खाना पीने से आपको लोग बुलाते हैं, मंदिर में जाइए, अपना पूजा कीजिए, नवरात्रि है। माता रानी के हम भी बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। माता रानी जहाँ भी है, जिस साल में है, हम लोग के ज़रूर देखना देखना बचाना, हर एक दुख से हम लोग के ज़रूर बचा के रखना। चरम श्रेया घोषाल के एक माता रानी के भजन सुनाते हैं।

जय दोस्तों, चिड़िया घुसाल ने गाया है जागो रे मेरी मैया। मैया तो सदा जागा है, माता शेरावाली हमेशा जागता है, जागता रहता है। हम लोग के जागना चाहिए, हम लोग के मांगना चाहिए। माता शेरावाली के लिए बहुत ताकत है, मांग के तो देखिए कि हर एक चीज वहाँ से मिलते ही। माता रानी, माता शेरावाली तो सब हमेशा जागते हैं, हम लोग के देखते हैं। जय जहाँ से देखते लेकिन हम लोग के देखते हैं, हम लोग के जागना चाहिए। जागो हमारे लोगों और पुकारिए माता रानी के। नवरात्रि है, नवरात्रि करिए, प्यार से करिए और दिल से करिए और मांग के देख। माता रानी के घर में हर एक चीज़ है। मैं भी माता रानी से मांगता, हर एक इंसान के दुख दूर कर दिया जाए। माता रानी जो देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, होना चाहिए लेकिन ऐसा भी होना नहीं चाहिए, इस पर गौर किया जाए। माता रानी आप है दुनिया का माँ है, आप है देखने वाले बचाने वाले, हम लोग के आप ही है और हर एक हम सब आपके चरण में है और हमेशा हम लोग की देखभाल करना, यही मांगना है। हमारा लोग, हमारे सुनने वाला, माता रानी सदा जागता रहता है। ठीक है, हम चलते हैं अरिजीत सिंह की तरफ और सुनते हैं नवरात्रि के एक और भजन।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में, कहते ये माँ मुझे अपना बस में कर ले कि मैं आपके चरण में सर झुका के बैठूं और आपसे ही प्रार्थना करूं कि हर दुख से हर प्रॉब्लम से दूर कर देना, मुझे बस में कर लेना। ए माता रानी, यही है नवरात्रि। जी नवरात्रि कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। नवरात्रि में बहुत ही ताकत मिलता है माँ शेरावाली के, कहते ही नहीं कह सकते हैं। वो नौ चेहरा हम लोग के जानना चाहिए कि वो नौ चेहरा क्या है, कौन सा कब अपना रूप बदल के आएगा माता रानी, कब माता रानी अपना रूप बदल के आएगा हमारा ज़िंदगी में, कौन सा रूप लेके आएगा। ये सच बात है हमारे सुनने वालों, इसमें ज़रूर विश्वास करना चाहिए। यही है, जो विश्वास करेगा वही जीतेगा। कहते हैं इस दुनिया में विश्वास एक ऐसा चीज़ है कि विश्वास करेंगे तो सच में है। और मान लें हमारा बात कि माता रानी की जो नवरात्रि है सच बात है, नवरात्रि करके देखना, नवरात्रि करना या न करना, विश्वास करना एक बहुत ही बड़ी बात है और नवरात्रि है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हर जगह पे मंदिर ही खुला है नवरात्रि के लिए, भोजन है, खाना है, पीना है, प्रसाद भी है, जाइए और वहाँ पूजा कीजिए, देखिए कैसे लोग माता रानी की पूजा करते हैं। मंगलवार हो चुका है दोस्तों, सुबह का प्रोग्राम है, हल्फ तीन हो चुका है, ये मैं बताना तो भूल गया था कि आज मंगलवार है। और घड़ी का सब देखा जाए तब हो चुका है हल्फ तीन, 13 अक्टूबर हो चुका है 2026 में, हमें 2 महीने और है तब हम चला जाएंगे 2027 में। ये जो साल है बहुत ही ख़राब बीता है, हर जगह पे दुख है, मातम है, बहुत सारे दुख और मातम इस साल में है। हर एक को बच के रहना चाहिए, अभी 2 महीने और है और नवरात्रि है, बस पूजा कीजिए माता रानी से, यही दुआ मांगिए, यही मांगिए, यही पूजा में मांगिए कि हर एक जगह पे अच्छा हो जाए, जहाँ पे दुख है, जहाँ प्रॉब्लम है, मातम है, हर जगह पे शांत हो जाए। सहन शक्ति दे माँ इन सबको, अपने दुख को सहने के लिए इतना सहन शक्ति दे, हम लोग के इंसान की ज़रूरत है। जो आपके दरबार में है, जो आपके चरण में बैठ के पूजा करते हैं, उसका पूजा स्वीकार कीजिए माता रानी, यही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ। माँ है, हर लोग माता रानी कहते हैं, माँ शेरावाली है, और ये भी मैं मांगता हूँ जो आपके चरण में बैठ के पूजा कर रहे हैं, उन पूजा को, पुकार को सुनिए और उनको ज़रूर मदद कीजिए। दुनिया में प्रॉब्लम जो है उसे थोड़ा दूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही भजन लेके श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, ये जो सिंगार किया जा रहा है इस वक्त दुनिया में हर एक माँ लोग है, जैसे माता रानी है, हर एक माँ माता रानी होता है और सिंगार यहीं से निकला है। माता रानी ने दिखाया है क्या सिंगार है, क्लियर है, साड़ी है पहनने के लिए, लाल है, हर एक चीज वहीं से आया है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं। हमारा बहन भी, हमारा दीदी है, प्रोग्राम को बहुत अच्छे लगते हैं, मुझसे अभी तार में कॉल किया था, कुछ बातें हुए हैं। सवित्री भोला सिंह, जो हम सदा दीदी कहते हैं, आज भी कॉल किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत हम लोग के बहुत आशीर्वाद दिया है, फाउन हिंदुस्तान हिंदुस्तानी रेडियो के बहुत आशीर्वाद दिया है। और वो भी हर एक माँ को हम इसी नज़र से देखते हैं, वो भी माता रानी है। नौ रोज का जो नवरात्रि है हर एक माँ के लिए ही जो माँ है। और हमारा बहन जो है इस सविती दीदी, एक भजन मांग लिया है, एक भजन हम चलाएँगे उसके नाम, यह भजन जो अभी हम रखेंगे वो मांग किया है, हर एक माँ के लिए जो माता रानी है, माँ शेरावाली है, हर एक माँ में वही ताकत है जो माँ शेरावाली के है। और बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी कि आप हर एक माँ के लिए, हर एक के लिए इस भजन को मांग किया है। जो मैं अभी सुनाऊंगा वो सवित्री दीदी का मांग है, हर एक जो प्रोग्राम को सुनते हैं, अपना नवरात्रि को रखा है, दिन और रात पूजा कर सकते हैं, नौ रात्रि है, रात दिन से आप पूजा कर सकते हैं। और सभी दीदी ने हर एक माँ के लिए मांगा है, सच बात है, ये जो माँ शेरावाली है हर एक माँ में है, हर एक माँ में ये है, आज हर एक माँ का ये नवरात्रि है। और ये भजन मैं चलाऊंगा नामस फाउन हिंदुस्तान रेडियो स्पेशल, हर एक माँ के लिए जो सभी दीदी ने मांग किया है।

जय हाँ दोस्तों, जय माता जी। अभी मैंने कहा था सविती दीदी ने इस गाने को मांग किया हर एक माँ के लिए। हर एक माँ में माता रानी है, माता शेरावाली हर एक माँ में है। जैसे शेरावाली हम लोग के पोसते हैं, देखते हैं, देखभाल करते हैं, उसे हम लोग के माँ भी हम लोग के पोस के बड़ा किया है। हर एक माँ में माँ शेरावाली बसते हैं। और सविती दीदी, सविती भोला सिंह जो हम दीदी कहते हैं, हर एक माँ के लिए इस गाने को, इस भजन को मांग किया था। सविती दीदी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हर एक माँ के लिए इस भजन को मांग किया है। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि अनामस फाहुन के बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और उसे फाहुन सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हम आगे चलते ही एक बार फिर से श्रिया घोषाल के लेके माता रानी के लिए कुछ और बोस का कहते हैं। इसे दिल से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या गा रहा है। और सच में गा रहा है, सच बात है। मानत देव न मानत पत्थर, हम लोग को मानना चाहिए। ये टाइम है, ये वक्त है, बहुत बहुत बहुत बुरा बुरा चीज़ हो रहा है। हम लोग जो इसमें विश्वास करेंगे तो कम बुरा चीज़ होंगे, हम लोग से भी कम, बहुत कम चीज़ होगी जो सिर्फ बढ़िया चीज़ हम लोग के करना चाहिए इस दुनिया में।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले नवरात्रि का प्रोग्राम जो है, एक भजन और हम चलाएंगे नवरात्रि के लिए, उसके बाद हम चलाएंगे कुछ हिले मिले जुले गीत आप लोग के हम जरूर सुनाएंगे। दो हफ्ते में नहीं थी, दो हफ्ते बाद में आज फिर से हूँ प्रोग्राम पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग के इस प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं एक भजन की तरफ और उसके बाद हम चलाएंगे कुछ न्यूज़ है, बयान है, रिक्लाम है, उसके बाद हम प्रोग्राम में आएंगे फिर से। कुछ गाने हम आप लोग के सुनाने वाले हैं।

0: जी हमारे दोस्तों, ये था एक आखिरी नवरात्रि की गाना। अभी आप सुन रहे थे कि लाल कपड़े पहन के माता रानी शेर पे सवारी करते थे। सच बात है, सच बात है, शेर पे सवारी करने वाला सिर्फ एक है और वो है माता रानी। चलो मिलके कहते हैं जय माता रानी। आप सब जानते हैं हर एक मंदिर का दरवाज़ा खुला है, आप जा सकते हैं। इधर इज वेलकम इन मंदिर, जाइए, वहाँ मीठा प्रसाद मिलते, भोजन भी मिलेगा और देखना कैसे माता रानी के पूजा लोग करते हैं। हम भी जाएंगे मंदिर, आज नहीं तो कल मैं भी मंदिर को जाऊंगा। देखना चाहता हूं एक बार फिर से, काफ़ी दिन हो चुका कि मैं नहीं देखा हूं इसका पूजा कैसे हो रहा है। माता रानी से भी मैं पूजा करना चाहता हूं, लेकिन मंदिर में देखना चाहता हूं। जाइए, वेलकम है, इट इज़ वेलकम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम नवरात्रि भजन का प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब हम चलाएंगे न्यूज़ और कुछ रखरखाव, उसके बाद हम आ रहे हैं कुछ हिले मिले गाने से, आप लोग के ज़रूर खुश रखूँगा। 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा, उसके बाद फिर मिलेंगे शुक्रवार को।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot €500.000, €30.000 meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag €530.000. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard €20.000 extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. bij Vahon Hindustani Radio.
0: Ja, dosto, ye tha hamara news aur kuch reklame jo abhi aap sun rahe the. ठीक है दोस्तों, हर एक कॉन्फ्रेंस कहते ही आज मंगलवार है, एक शुभ सुबह हो, मौसम की तरफ देखा जाए तो बारिश का मौसम है, हर एक चीज़ बच के करना, बचा के करना, मौसम बढ़िया नहीं है, जो लॉकडाउन पे है, अपना नौकरी पे है, बच के हर एक चीज़ को करना, जहाँ पे दुख है जहाँ मातम है, हमारा पूरा टीम फाहुन आप लोग के दुख सुख में शामिल है, और जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे, पैगाम पहुँचे, ढेर सारा प्यार पहुँचे। ठीक है दोस्तों, हम कुछ प्रोग्राम बना करके लाए हैं, कुछ गाने नए गाने हैं आई के है, और एक गाना जो गाया गया है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है इस गाने को कौन गाया है। आई एक ऐसा चीज़ है, वो लोग बना देते हैं गाने को और ऐसे बनाते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और नाम नहीं लिखते हैं ये गाना कौन गाया है, लेकिन ये गाना में कुछ दर्द है, बहुत ही बड़ा मतलब वाला गाना है, अगर आप सुनेंगे और सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे ये गाना कौन सा गाना है, कैसा गाना है, और एक बहुत ही अच्छी गाना है, लोग जो समझ जाते हैं इसे ज़िंदगी समझ जाएंगे, अगर आप इस गाने को समझ जाते हैं हर चीज़ आप कभी हर एक चीज़ बढ़िया ही करेंगे, लोग को इस गाने को सुनना ज़रूरी है, और काफ़ी अच्छी गाने हैं, कहते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ सबसे जो गाया गया है उसे कहता है समझौया के मौत, अगर आप समझ जाते हैं तो ज़िंदगी समझ जाएंगे, दुनिया समझ जाएंगे।

0: उस शाश्वत में समा जाऊं जो जन्म मरण को देख रहा, उस शाश्वत में समा जाऊं।
1: जय दोस्त, अभी आप सुन रहे थे ना मैं मन हूँ ना मैं तन हूँ। ये गाना जो गाया गया है इस वक्त इंडिया से, काफ़ी अच्छे गाने हैं। इसका जो मतलब है काफ़ी अच्छे सबसे अच्छे अच्छे वर्द कहते हैं, हर एक वर्द में दम है। कहते हैं ना मैं तन हूँ ना मैं मन हूँ, तो क्या हूँ मैं। अगर इस गाने को आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ मिलेंगे इसमें जानने के, पहचानने के लिए और सुनने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे प्रोग्राम को, हम ले चलेंगे क्योंकि 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। हम चलेंगे कुछ न्यू सॉन्ग्स में और 11 बजे से 12 बजे तक हम चलाएँगे कुछ पुराने गाने हम चलाएँगे। आप सब जानते हैं हमारा

जो प्रोग्राम को सुनते हैं इस वक्त, तो इस सवाल को गौर से सुनिए। ये जो जहल है इंडिया में, जेल है, जहल है, जहां लोग कुछ करते हैं तब जेल में जाते हैं और गुनाह करते हैं, जेल में जाते हैं, उसे लोग कहते हैं हवालात। कहे खतिन इंडिया में जहल के सब हवालात बोले हैं, कौन ची बा ऐसन के सब, कौन ची सबन वहाँ पे पावे है जहल में, तो ओका नाम सबर इस बा हवालात। अगर आप इसको सही जवाब देंगे, हमेशा की तरह आज भी आप सब एक गाने को मांग सकते हैं, क्यों इंडिया में जहल को लोग कहते हैं, जेल को कहते हैं हवालात। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सवाल। अगर आप सही जवाब को देंगे, क्यों नहीं शुक्रवार को आपको गाना हम ज़रूर चलाएंगे। आज हम फरमाइशें नहीं चलाएंगे, जो फरमाइशें दो हफ्ते मैं नहीं हूँ था, मैं जानता हूँ किसका किसका फरमाइश है, अभी मैं देखूँगा तो एक घंटे में उसका फरमाइश चलाऊँगा 11 बजे से 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम चलाएंगे कुछ न्यू सॉन्ग्स, हमने चलते हैं न्यू सॉन्ग्स 2026 वाला, कैसा ये बेखुदी है सनम।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कि गाना के अंदाज में इस गाने को गाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे 2026 का एक न्यू सॉन्ग से, और मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ अनुराग इश्क तेरा, और एक कंपोजर किया गया है प्रकाश जवाहर, और इसका लाइरिक जो है प्रकाश सिंह है, म्यूजिक भी है प्रकाश सिंह, एक नया कलाकार है, एक नया म्यूजिकांत है, एक नया लाइरिक्स लिखने वाला है जो इस वक्त इंडिया में काफी हलचल मचा रखा है। हम आप लोग सुनाते हैं, हम सब मिल के सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है अधूरा इश्क तेरा, आर्यन खान और रश्मिका इसमें काम किया है। और क्या गाना है यार, म्यूजिक कंपोजर जो किया गया है वो प्रकाश जवाहर है और लाइरिक्स है प्रकाश सिंह, म्यूजिक प्रकाश सिंह, मिक्स मास्टर प्रकाश रावत। और प्रकाश जवाहर का लेबल लग चुका है, काफ़ी हलचल मचा चुका है इस म्यूजिक में इंडिया में दोस्त। ठीक है, हम चलते आगे। तेरा नाम, तेरा नाम मूवी, तेरा नाम का एक गाना है, काफ़ी हलचल मचा रखा है ये भी इंडिया में।

जी हाँ दोस्तों, तेरा नाम अभी आप सुन रहे थे। न्यू सिस्टम का है, न्यू 2026 का ये गाना है और काफ़ी हलचल मचा रखा है इस गाने ने। कहते हैं लव द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चुने और ये द लव वाली गाना है। गीत हो ऐसा 2026 का है और काफ़ी हलचल मचा रखा है इस गाने को। इस गाने ने इंडिया में, दुनिया भर में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं काफ़ी हलचल मचा रखा है। हम आप लोग के लिए चलते हैं 2026 में, जिसमें इमरान हाशमी काम किया है और देखा जाए ये गाना है आई जिंदगी। सागर बैरागी का ये जो गाया गया है, सागर बैरागी है कंपोजर, सागर बैरागी लायरिक्स, सागर बैरागी म्यूजिक, सागर बैरागी मिक्स मास्टर, सागर बैरागी लेबल किया गया सागर बैरागी और प्रोडक्शन सागर बैरागी। ये कौन सा चीज़ है भाई, आप हर एक चीज़ में आप ही है और ये भी काफ़ी हलचल मचा रखा है, काफ़ी नाम को कमा रहा है इंडिया में गाने और बजाने में और गाने में भी। क्या आवाज़, क्या अंदाज से ये गाने को गाता है, हम आप लोग के सुनाने चाहता। द न्यू सॉन्ग्स 2026 का है आई जिंदगी।

जी हाँ दोस्तों, ये जो आई जिंदगी है, सिंगर जागर बैरागी है, ये काफ़ी हलचल मचा रखा है, हाहाकार मचा रखा है इंडिया में, और काफ़ी अच्छा गाते ही, क्या आवाज़ है, क्या म्यूज़िक, ये जितना चीज़ है ये खुद ही किया है इस गाने में। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही 2026 में अब आप को ले जाते हैं इश करते है जन्म। इसका कंपोजर जो है, सिंगर कंपोजर वो है सागर भाई रागी, लाइरिक्स भी है सागर भाई रागी जीनेश। चलो हम आपको सुनाते हैं, और आप सब चुन है डेफिनेटली लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ 12 बजे तक आपके साथ अनिल जारजू, जो आपके खिदमत में है। दो हफ्ते मैं नहीं था, अब फिर मैं आ गया हूँ वापस। लो मैं आ गया कहते हैं ना, इसमें कहते हैं लो मैं आ गया। और चलो आपको सुनाते हैं इश्क करते हैं सनम।

जी हाँ दोस्तों, इश्क करते ही सनम अभी आप सुने थे, 2026 का गाया हुआ गाना है और जो काफ़ी हलचल मचा रखा है दुनिया भर पे। जहाँ जहाँ हमारा हिंदुस्तानी भाई लोग रहता है वहाँ वहाँ पे ये गीत बहुत ही सुंदर, बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छा गाना को गाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने कहा था 11 बजे से 12 बजे तक हम फरमाइश चलाएँगे, लेकिन नहीं, मैं फरमाइश जो सही जवाब को दिया है मैं फरमाइश अब ही चलाऊंगा, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं हर एक के फरमाइश सुना सकूंगा। याद रखिए सवित्री भोला सिंह की एक फरमाइश मुझे सुनाना है। बेया है जो प्रोग्राम को सुनते हैं, रामोन फिंक है जिसका फरमाइश हम सुनाएंगे, ममता है जर्मन से जिसका मैं फरमाइश सुनाऊंगा, अंद्रेई है जिसका फरमाइश मैं सुनाऊंगा, और देखा जाए तो यहाँ पे वीरेन भी है अलमेरे से, उस जिसका फरमाइश मुझे सुनाना है जिसका गाना सही जवाब दिया है, और सवित्री बदल है। अभी दो लोग और है, 10 गाने हम फरमाइश में सुनाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। फिर शुक्रवार के हम फरमाइश है जो सही जवाब को देगा हम उसका फरमाइश ज़रूर पूरा करेंगे। चलो हम ले चलते हैं सवित्री भोला सिंह जिसे हम दीदी कहते हैं, हमारा कराओके टीम में गाना गाते हैं टेक अ चांस का को फरमाइश में, और सही जवाब को दिया था और मांग भी किया है, एक अच्छा भजन है, माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, हर एक के लिए, अपने आप के लिए और हर एक के लिए इस गाने को मांग किया है। सवित्री दीदी आपका गाना हम आप तक पहुँचाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, जैसे आपने कहा है वैसे मैंने कहा है, हर एक के लिए भूल मत जाना, हम सब नौ रात्रि में है, जय माता जी बोलने के लिए मत भूलना, हे शेरा माँ यही है माँ जो हम लोग के हर एक चीज़ से बचाएगा। और सवित्री दीदी ने माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो, क्या गाना को मांगा है। मंगलवार है, सुबह का प्रोग्राम है, अभी तक क्वाट फॉर एलफ हो चुका है, हम फरमाइशें अब चलाएंगे।

जहाँ दोस्तों माँ मुझे अपने आंचल में छुपा लो सवित्री। भोला सिंह जो प्रोग्राम को सुनते हैं सदा पसंद भी करते हैं और भाई बहन का नाता हमारा करो का फरमासी में गाने को गाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी क्या प्रोग्राम को सुनते ही और ये गाने को मांग क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे, हम ले चलेंगे आगे मफरव बेया जो प्रोग्राम को सुनते ही और मांग क्या है। सब प्यार के बातें करते ही कभी प्यार में धोखा खा लिया है मफरव बेया तो समर जा भी से तो फिर प्यार के बातें हम सुनेंगे। आप जो गाने को मांगा है जाने तुम्हारा भाई तो भाई बैठे थोड़ा ख़राब कर लेता लंठाई चाहिए। ठीक है, सवित्री के गाना मैंने अभी सुना दिया और मफरो भैया बहुत बहुत अच्छी गाने को मांग किया। सब प्यार के बातें करते ही पर करना आता नहीं है। देखा जाए मूवी मतलबी दुनिया नहीं कहती इन शस्त्र का है। गाने वाला है मुकेश और लाइरिक्स से रमेश गुप्ता। चलो हम सुनाते हैं आपके गाना, हम सही जवाब को दिया भैया और सही गाने को मांगा है। आपका नाम करते ही आपके घर तक हम पहुंचाते हैं, आप प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद भी करते हैं और ये गाना भैया के नाम है। अगले गाने मैं तैयार कर दिया हूँ रामोन फिंक के लिए। इसके बाद रामोन फिंक का गाना आएगा।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे सब प्यार के बातें करते हैं पर करता आता नहीं, मूवी मतलब ही दुनिया नहीं कहती, एनन सस्तक का है मुकेश की आवाज़। अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था मुफरव बेयातनाक शहर से प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, सही जवाब पे सही गाने को मांग किया है और बहुत बहुत धन्यवाद है मुफरव भैया। ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना, हमारा प्रोग्राम को सुनते रहना, रेडियो फाहुन को सुनते रहना, क्योंकि आप चुन हैं द एवरग्रीन लव फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। आप चुन हैं दराग शहर से प्रोग्राम को करते ही, जहाँ पे सरसराहट हवा चल रहा है, पानी के किनारे है, लोग कटिया लगाते हैं, खाना पक रहा है, फेगताइज खाना है, कढ़ी पक रहा है, आम डार के, जीरा डार के और आलू तैकारी पक रहा है, लव बोट शांता लव बोट पे खाना पक रहा है, अभी हम सब खाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे इपम्बरख भाई रामन रामन फिंक जो सही जवाब को दिया और मांग किया है मुकेश का एक गाना है, और देखा जाए इस गाने की तो रात और दिन दिया जले मांग किया है, काफ़ी अच्छे गाने को मांगा है, रात और दिन दिया जले मुकेश की आवाज़ है, शंकर जय किशन का म्यूजिक और लायरिक्स है।

0: जी हाँ दोस्तों, रात और दिन दिया जले मुकेश की आवाज़ थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक और लाइरिक्स था, और मांग किया था रामन इपम वृक्ष से, जो करौका भी करते ही लोग जाते करौका करने के लिए, वहाँ पे करौका मास्टर है। ठीक है भाई रामन, आप प्रोग्राम को सुनते ही सही गाने को मांग किया है, सुबह का प्रोग्राम है, देखा जाए 12:00 हो चुका है दोस्तों। धन्यवाद भाई फिंक, भाई रामन आप प्रोग्राम को सुनते हैं, भाई जैसा भाई से बड़ा है और प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, और आज भी गाने को मांग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई रामन, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना। ठीक है दोस्तों, हम चलते न्यूज़ और रेखलामों की तरफ, उसके बाद हम यूं गया यूं आया आपके साथ हम रहेंगे एक घंटे और। हाँ जी हाँ, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो गया है इसमें, और हम चलाएंगे जरूर ये न्यूज़ को, हम चलाएंगे आपके लिए।
1: राम सूत वकालत का काम करता है, जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015 21.

जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक हिमेश देशमिया, लाइरिक से समीर और गाने वाले हैं अलका याग्निक कुमार जानू, फिल्म में काम किया है अभिषेक बच्चन और मांग किया है जर्मन से ममता, इस गाने को मांग किया है सही जवाब पे, सही गाने को मांगा है हम, मुझे भी तब बैठे थे हिल गया इस गाने पे, यार क्या गाना है, क्या गाना मांग किया है ममता, बहुत ही अच्छी गाना है, ऐसे ही चुन रहना हमारे रेडियो पे और सुनते रहना और पसंद भी करते, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जर्मन से कहते डंकशाइन ऑफ विदरशाइन, फिर मिलेंगे शुक्रवार के और हम प्रोग्राम को चलाते हैं आगे चलेंगे। अब हमारा गाना है जो वो है

अंदरी रामथियान जिंग जो इस गाने को मांग किया, हमेशा पुराने पुराने ऐसे से गाना मांगते हैं कि जी खुश हो जाते हैं। हम मिलकर सुनेंगे, काफ़ी लोग हैं जो प्रोग्राम को सुनते हैं और ऐसे सुनते हैं ना, काफ़ी अच्छे गाने हैं। जरा मन के मरिया खोल।

जी हाँ दोस्तों, जरा मन की केमरिया खोल सैया तेरी द्वारे खड़े। और अंद्रे रामधियान सिंह इस गाने को मांग किया, सही जवाब को दिया है। और काफ़ी पुराना गाना है जो मांग किया है, हमेशा पुराना पुराना गाना मांगते ही और लोग बहुत खुश हो जाते हैं सुन के लिए। भाई मेस्टर अंद्रे, आप हमारा भाई से बड़ा है और हमारा साथ करो करती में गाना गाते हैं, करो को फॉर मसी में एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है और हमेशा अच्छी अच्छी गाने को मांगता है। आज भी ऐसा गाने को मांगा है कि जी खुश हो गया है, ऐप पे आ गया मेरा ऐप पे कि क्या गाना आपने मांगा है। ठीक है भाई अंद्रे, आप प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना। अब मैं ऐप को क्लोज कर दिया है, काफ़ी लोग हो चुका है इतना।

लोग ठीक है, अगले आने वाले फ्रायदा को हम आपके फरमाइश से पूरा करेंगे। आज के लिए ठीक है, काफ़ी लोग हो चुका है, हम अपना ऐप को क्लोज कर दिया है, अब मुझे और कोई ऐप नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम ऐप खोलेंगे और जो सवाल मैंने किया था कि इंडिया में जहल के कह कर सब हवालात बोले हैं, उस पे मुझे सही जवाब को देना। अभी हम 12 बजे के बाद हमारा ऐप खुल जाएंगे शुक्रवार के लिए, जो सही जवाब पे सही सवाल पे सही जवाब देगा उसके गाने को हम यूज़ करेंगे। चलो दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं, हम फरमाइश चलाएंगे वीरेन सरजू जो अलमेरा से प्रोग्राम को सुनते हैं, और उसके बाद हम चलाएंगे सवित्री बदल के ऐसे हम चलाएंगे प्रोग्राम बोल के सुनाते हैं कि आप तैयार रहना प्रोग्राम को सुनने के लिए। चलो हम चलते हैं अलमेरा की तरफ, जहाँ वीरेन सरजू प्रोग्राम को सुनते हैं। सही जवाब को दिया है और मांग क्या है, तेरे मेरे रिश्ता पुराना, देखा जाए मूवी आवारापन है 2007 के, तो ऐसा सही फका ये प्रोग्राम है। हिमराम हसमी इस फिल्म में काम किया है, मुस्तफ़ा शहीद, और देखा जाए इसका जो म्यूज़िक बजाया गया है प्रीतम जो इस म्यूजिक को बजाया है। वीरेन सरजू अलमेरा से प्रोग्राम को सुनता, सही जवाब को दिया है और प्रोग्राम को सुनता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन, डांके वेल, अच्छे हम लोग के सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, आपके गाना हम आपके घर तक पहुंचाते हैं।

अरे उठो नहीं, उठो नहीं, उठो नहीं, लेटे रहो, लेटे रहो। जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देख रही मां, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। अरे आप, तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

जी हाँ दोस्तों, मूवी आवारापन तो जैसन सैफ का है और गाने वाले हैं मुस्तफा शहीद। ठीक है दोस्तों, वीरेन अलमेरा से प्रोग्राम को सुनते ही और इस गाने को मांग किया था मैंने आपको, गाना अपने घर तक पहुंचा दिया, कानों तक पहुंचा दिया। वीरेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल कि तुम प्रोग्राम को सुने हैं और इसे पसंद करते हैं, थैंक यू वेल, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं फोर्स कोतन की तरफ जहाँ पे शांता सार्जु को हबीर प्रोग्राम को सुनते हैं और आज एक गाने को मांग किया है, देखा जाए। नहीं, इसके बाद शांता को हबीर के रहेंगे। अब हम चलेंगे चोरी चोरी दिल तेरा चुराया, सावित्री बदल के तरफ, सावित्री बदल के तरफ। इसके बाद शांता सार्जु को हबीर जो फोर्स कोतन से प्रोग्राम को सुनते हैं उसका फरमाइश आएंगे। इसके बाद तैयार रहना सुनने के लिए और तब तक के लिए हम चलते हैं सावित्री बदल जो दिनांक से प्रोग्राम को सुनते हैं और काफ़ी अच्छे गाने को मांग किया है, चोरी चोरी दिल तेरा चुराया है।

जी हमारे दोस्तों भी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार जानू की आवाज, और मांग किया था सवित्री बदल दरहाक शहर से, चोरी चोरी दिल तेरा चुराया है, और सही जवाब पे सही गाने को मांग किया है सवित्री बदल। बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम को सुनते हैं, फाहन को सुनते हैं, हम लोग को सुनते हैं और पसंद करते हैं। आप गाने को मांग किया था, हमने गाने आपके कानों तक पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी वक्त हम नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लोग हैं। हम सोचते हैं 12 बजे तक हम इस फरमाइशें पूरा कर देंगे। हमारा लाइन तो बंद हो चुका है लेकिन फिर भी एक और आ गया है, हमारा दोस्त है रुदि त्वेई है रुदि गोली, जो प्रोग्राम को भी सुनते हैं, वो भी गाने को मांग किया है। ठीक है, हम चलते हैं फोर्स को उतन, जहाँ शांता सार्ज को हबीर प्रोग्राम को सुनते हैं, और उसका जो हसैन है, उसका जो सास है गुजर गया है, शुक्रवार के फ्राइडा के ऊपर पूरा काम होगा सभी कुछ, और वो एक गाने को मांग किया है, परिवार गम में है। अब तामन से फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो से हम आप लोग के कौंदले करते हैं, सहन शक्ति देते हैं भगवान से कि आप लोग हर एक चीज़ को सह सकते हैं, यही मांग है भगवान से, इतना ही ताकत दे के आप लोग सब चीज़ आप लोग सह सकते हैं और कर सकते हैं। रेमन भी है, रेमन को हबीर भी है, हम उसे भी कहते हैं कि भगवान आपको इतना सहन शक्ति दे कि आप सब कुछ सह सकते हैं। माँ दुनिया में चला गया है, माँ नहीं है, शुक्रवार को उसको सभी कुछ शुक्रवार की होगी, बखराब होगी या जलेगी, उस सुख फ्रैदा के ओकस पूरा चीज़ होगा। और हमारा बहन शांता हमारा बहन है सारजू को हबीर है, और अपने हसैन अपने माँ जो अब दुनिया में नहीं, उनके लिए इस गाने को मांग किया है। हम सब सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, प्यार से सुनेंगे। आसमां से फरिश्ता कहाँ कहाँ रहा है, देखा जाए इशारा बानो और अतेंद्र कुमार इस फिल्म में काम किया है, बलराज शानी और शंकर जय किशन का म्यूजिक है, हसरत जयपुरी का लायरिक्स है, और पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है। बहुत दुख की बात है कि आज हमारा, हम भी उसे माँ कहते थे, आज दुनिया में नहीं है, और फ्राइडे के हर एक चीज़ उसका पूरा होगा।

जी हाँ दोस्तों, मूवी अमन लेखन तीन सीफने शस्त कहे और पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ थे। शांता सार्जू को हबीब जोफोर्स को उतन से इस गाने को मांग किया है और रेमन भी, जिसका माँ अब दुनिया नहीं है, जहाँ भी रहे, जिस हाल में रहे, जैसे रहे, बस बढ़िया से रहे, जहाँ पे वो है एक दिन हम सभी को वहीं पे जाना है। बारी बारा वक्त बैठ के गुनना है कब जाना है, लेकिन आज जहाँ माँ है वहाँ हर एक को जाना है एक दिन। बस भग मालिक आप लोग कितना सहन सकते थे, ताकत दे कि आप सब सुखवार के लास्ट जो है ओकर मट्टी के जितना चीज हुई इतना सहन सकते थे कि आप सब चीज सह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लोग हो चुका है, हम देखते हैं आधे घंटे का प्रोग्राम और है मेरा, यानी कि 25 मिनट और है। हम सोचते हैं 25 मिनट पे हम 4 या 5 गाने और आप लोग सुनाएंगे। और अगले गाने जो मैंने रख चुका है वो है ग्लेन। ग्लेन प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं और मांग किया है आँखों आँखों तुम्हारी दो जहाँ। फिल्म जमीर है, जमीर आसमान एक तीन एनन जीफन तक का है, तू ये सीफन तक का, यहाँ एन सीफन तक, यहाँ तू ये सीफन तक लिखा। सिंगर है किशोर कुमार, लायरिक्स है इंदिवर और इसका म्यूजिक डायरेक्टर है खुद किशोर कुमार। ठीक है ग्लेन, हम आपको गाने पहुँचाते हैं आपके पास।

जी हाँ दर्शक भैया, आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज रील। दत्त इस फिल्म में काम किया है और मांग किया था ग्लेन, जो प्रोग्राम को सुनते हैं उस गाने को मांग किया था। जी हाँ ग्लेन, बहुत बहुत धन्यवाद यार कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, मांग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई। आप फाहन को सुनते ही और पसंद भी करते ही ऐसे ही सुनते रहना, शुक्रवार को फिर रहेंगे और मजा ही लेना। मैंने एक सवाल किया था, अगर आपके पास जवाब है तो मुझे ओफर एंड से ऐप कर सकते ही आज अभी से, तो अब तक तो बंद क्लोज हो चुका है हमारा ऐप। सवाल था, इंडिया में जहल को जेल को सब क्यों हवालात कहते हैं, अगर आपके पास इसका हल है तो मुझे ऐप कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अलमेरा, जहाँ पे मनोज एक बहुत ही बढ़िया कलाकार है दोस्तों, एक बहुत बढ़िया कलाकार है मनोज, और इस प्रोग्राम को सुनते ही अलमेरा से और गाने को मांग किया है, और सच में एक ही बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छे गाने को गाते हैं और स्टाइल में है, बहुत अच्छा स्टाइल है उसका, और वो भाई है हमारा, भाई से बड़ा है, और मांग किया है प्रोग्राम को सुनते हैं, मांग किया है ये मौसम रंगीन समा, और देखा जाए मुकेश और जुमन कल्याणपुरी की आवाज़ है, और इस मूवी है देखा जाए मुडर गिफ्ट और नई घंटी, इन शस्त्र का है, और मुकेश कल्याण सुमन कल्याणपुरी है, इसका म्यूजिक है रफ़ी ने म्यूजिक को बजाया है, और लायरिक से गुलजार पतवारा। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं भाई मनोज अलमेरा से, जो एक बहुत बहुत ही बढ़िया कलाकार है, आज मांग किया है ये मौसम रंगीन शमा।

जी हाँ दोस्तों, ये था अलमेरा में जहाँ मनोज मनोज इस प्रोग्राम को सुनते ही एक बहुत बढ़िया कलाकार है भाई। उसका गाना मैंने सुना है, उसका गाया हुआ गाना भी मैंने सुना है, बहुत अच्छा कलाकार है। प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और गाने को मांग किया था, ये मौसम रंगीन शमा और फिल्म है देखा जय मुदर ग्रिफ और निकतिन एनन सस्त कहे और मांग किया था मनोज अलमेरा से। भाई मनोज, आपका गाना मैंने पहुंचा दिया आप तक और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया का प्रोग्राम को सुनते हैं हमारा तुम्हारा जो लोग सुनते हैं। और 10 मिनट का और है, 10 मिनट और बचा हमारा तुम्हारा साथ, हम फिर मिलेंगे शुक्रवार को। तब तक के लिए 3 गाना और है, हम सोचते हैं हम 3 गाने ज़रूर फरमाइश में सुना देंगे। चलो हम चलते सूरीनाम की तरफ जहाँ पे वखदक से गुलाम नबी वैक से गीता का श्रीराम प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया ओ मेरे दिल का चैन किशोर कुमार की आवाज है, रेस खन्ना इस फिल्म में काम किया है। और देखा जाए मेरे जीवन साथी निखिल जिन ट्विन से इवन तक है, एरदे बिरमन का म्यूजिक है, मजरूत सुल्तानपुरी का लाइरिक्स है दोस्तों। काशीराम के नाम, गीता काशीराम के नाम।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक से गुलाम नबी वैक्सी मफरो काशीराम, गीता काशीराम प्रोग्राम को सुनते ही सही जवाब को दिया और मांग किया था ओ मेरे दिल की चैन। ठीक है मफरो काशीराम, गाना मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया। वक्त से जुड़े हैं और वक्त कम है, दो दो गाना और है दो लोग के लिए, वो दो गाना मैं सुना देता हूँ, उसके बाद हम विदाई लेंगे अपना। हमारा हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, हम चलेंगे जहाँ से रुदी गोली भी प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है मुजाफिर हूँ यारो, किशोर कुमार की आवाज़ है, जितेंद्र इसमें काम किया है और मूवी है परीक्षा निकतिन तो सीफन तक का है, लाइक से गुलजार की, म्यूजिक डायरेक्टर है एर दी बिरमन और गाने गाने गाना चला जाता है गोली की तरफ रुदी गोली।

जी हाँ दोस्तों, जनाक्षेर्षी भाई रुदी गोली प्रोग्राम को सुनते ही और पसंद भी करते हैं। और मांग क्या था, मुसाफिर हूँ यारो, परीक्षा है, मूवी का नाम नहीं कहती, तो इसी फन तक आए। ठीक है भाई गोली, बहुत बहुत शुक्रिया रुदी कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते ही। शुक्रिया, ऐसे ही सुनते रहना हमारा रेडियो फन को। और एक आखिरी गाना बचा है दोस्तों, मैंने बहुत नहीं लिया, फ्राइडा को मैं फिर रहूँगा, प्रोग्राम को हम आगे ले चलेंगे। ईदन से मफराऊ शकुंतला है, प्रोग्राम को सुनता है, सही जवाब को दिया था और सही गाने को मांग किया है। मफराऊ शकुंतला ईदन से है और मांग किया है कितनी हसरत है। और चले सुनते कुमार शानू, कुमार शानू और साधना संगम की आवाज़ है दोस्तों।

कलाना जाने ऊंच नीच, कलाना जाने जांच, सरस्वती माता जी जे हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार।

सुनाएंगी और शाम को 6 बजे अपना प्रोग्राम को मेहराल करेंगे। आज है मंगलवार, 13 तारीख अक्टूबर हो चुका है, घड़ी की ओर देखा जाए तो 11 मिनट हो चुका है 12 बजने में। मंगलवार का शाम का प्रोग्राम है।

हमारे दोस्तों, हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे लोग, हम एकदम से चला जाते हैं, शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अपना सूरीनाम देश में। सूरीनाम देश की ओर हम जाते हैं, हमारे मौसी मौसा नानी नाना, देखो भैया रोफ ओवरफॉल की ओर तो हम तो जाते। एक आदमी भैया सुतल्ला सुतल्ला भैया सुतल्ला और सुतले में होकर 12,000 यूरो से बन रोफ कर ले से नानी। तो बोलिए चोरवन कैसे जानिस के रेमिया 12,000 यूरो लेके सुतल है। तो एगो 25 बरिस के आदमी आई एल जो है रविवार के यानी सोनदा के रात के कोकोबिया वेख में सूरीनाम देश में ओके सबन ओवरफॉल करी से भैया हम मस्त कर द क्रिमिनलन खवापन 12,000 एरो से चोरवन धनी हो गए भैया। और ये आदमी रोवे है मोड़ी पे हाथ धर के बोले है फॉर द वुमन वर्ड कि उस सुतल रहा अबले सुतली में चोरवन ओके ओवरफॉल करी से ओकर घर में ओकर कवाड़ी तूर के भीतर गए है। और बोले ना द देर फॉर वोनिंग वार वेल देख मार नीड ऑफ स्लॉट तू 12,000 एरो ली के और बिना कवाड़ी तारा कर ले सूते बाटे। तू सोचे मॉरिशियस में बाटे कहा रे भैया तू ऊ देश में बाटे इन फॉर द लंदन दार ऑफ दिस मोमेंट सो एर ना हमने द क्रिमिनल दिस सोर्ट रोफर्स मेंशन मिसहैंडलन। एंड आई हैव इट ओ गहोर्ड दैट दिस सोर्ट थिंग इज ओक इन गुयाना गेबुर्ट मेंशन। आई हैव एन फ्रेंड फ्रॉम गुयानीज अफकोम्स जो यहां रहे वो भी बतावे बोले बहुत जबर गायना में भी ऐसे रोफ हुए भैया और गायना और सरनाम में इतना जबर रोफ हुए द दादस ओवर मिस्टर द हेसलाख्त ओवर बदरेक करी पिस्तौल से और ओकर 12,000 पैसा जो ओकर नख काशे में रहा ओकर बेदी लगे ओके लेके और सब झग भगे भैया बोले ना द दान फॉर लीटन द फरदाख्तन ऊपर से ब्रोम फिश पेस चोर चल गए डॉलर स्ट्रांत में रेखतन इंदिरा लैंड में सिपाही एकर बारे में ऑब्सपोरिंग फॉर आन होल्डिंग खोजे हैं लेकिन ओके का पियो भैया ब्रोम पे सब 12,000 से धनी हो गए है नानी। तो ये सब चोरी ऊपर से तो के 12,000 एरो ली के और तू कवाड़ी ना ताला कर ले भैया तू कितना चलाक आदमी बाटे मैं बतिया ये 12,000 वाई कहाँ पाई से वरना लिखल कि बिजनेस करे कि साकमान है कि नीदरलैंडर है कि बेल्टलैंडर एकर बारे में और ना लिखल। अब देखो दोस्तों हम जाई है रोनी ब्रंसवाइक की ओर। तो रोनी ब्रंसवाइक यानी कि अबॉब के का बोले है Freed something that NDP leading sterk moest zijn uitgekomen tegen uitspraken van Ronnie Brunswijk. Ha. NDP के पार्लियामेंटारियर जो है जेनिफर फ्रेडसाम एनडीपीयर है बोले उफेनी करेगा कि बहुत यामर दैट द लीडिंग फॉर हर पार्टी जो एनडीपी के लीडर जो है बोले नीत रियाखेर जो ऐश्वर्य अबोप लीडर और बोले ऊपर से कोवालिसी पार्टनर है ब्रंसवाइक रोनी ब्रंसवाइक की एनडीपी के 18 सीटल है मैं 18 सीटल बोले आफकर ऊपर फरकी सिंह में नीट हीफ कवोनन जो बोले 18 सीटर से बोले ना जीता ली बात अबॉप यानी कि रोनी ब्रंसवाइक बोल ले रहा। तो एनडीपी के पार्लियामेंटर जेनिफर फ्रेडसाम बोले एनडीपी बोले एकर बारे में बोले एक को अंतोत ओके ना दीज मैं भैया कभी कभी सच्चाई के आगे तो कौन चीज जाइए वहाँ मूड लड़ावे भाई एगो इरलक बात है दन इस मुहिलक अन यहीश्ट अंतोर तक हीफन रोमल अंतोर का ये आलताइड हीफन और नोडख रोत्सोई का ये वेल आई हालन में बोले सच्चाई के आगे झूठाई साथ ना देवे भैया एक सेखनी दत दत दत

अरमा, और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जो है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाए गए हैं। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

ये अम्बेमा नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए अम्बे।

मेरे अम्बे और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर। है

Africa, Happy Station, Far on Hindustani Radio. काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, कांटेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से हमारा तार का नंबर है

रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। सही बात है, जब कुछ बात करना है तो कान में कीजिए या और करीब आके कीजिए। अगर आप दूर रह के बात करेंगे तो सभी लोग सुन लेंगे और सभी बातें अभी नहीं सुनाई देगा। तो फिल्म अमानत का सॉन्ग है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये सॉन्ग चलेंगे।

कर न करो बात करीब आ जाओ। दोस्तों फिल्म फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। फिल्म फर्स्ट जो समय पर सुनाम देश में पेश हुआ तो थिएटर द पारल इनका थ्रिलर दिखा रहे थे। आप जानते हैं थिएटर द पारल द लिक्स फिल्म का एजेंट था और थिएटर जसोदरा नहीं नहीं थिएटर द पारल दलित फिल्म के नहीं था, थिएटर जसोदरा था दलित फिल्म के और इंडिया ओवरसीज का फिल्म थिएटर द पारल में पेश किया जाता था। तो थिएटर द पारल फिल्म फर्स्ट का थ्रिलर पेश करता था। तो एक दो हफ्ता पेश किया उसके बाद थिएटर जसोदरा भी इसका थ्रिलर शुरुआत किया। तो दपाल का मालिक जो था सोचा है कैसे हो सकता, मैं तो इंडिया ओवरसीज का एजेंट हूँ और ये फिल्म इंडिया ओवरसीज का है, कैसे हो सकता है कि दलिक्स फिल्म का थिएटर जो है थिएटर जसोदरा ये फिल्म पेश करे। तो ये बात रेक्टर के सामने दोस्तों जज के सामने पेश किया गया। लोग को मालूम नहीं था कि उन दिनों में देवर प्रिंट में भी फिल्म बनते थे। तो ये फिल्म फर्स्ट देवर प्रिंट में बना और ये खियाना में ये फिल्म पेश होता था दलिक्स फिल्म का थिएटर में। तो थिएटर जसोदरा का जो एडवोकेट था वो बताया कि देखो देवल प्रेत में है और ये फिल्म हम लोग अभी खरीदा है, तो ये फिल्म जसोदरा भी पेश करी। तो रेक्टर थिएटर जसोदरा का मालिक को कहा कि आप सही बात कहते हो, इन्हें कहा कि आप फिल्म पेश कर सकते। तो थिएटर द पारल का जो मालिक था वो तो ये बात हार गया। तो ये फिल्म दो थिएटर में पेश किया गया दोस्तों लगातार। और क्या बात सही बात यह है कि थिएटर जसोदरा न सिर्फ फिल्म फर्स्ट पेश गया नहीं, इसके साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है डबल फिल्म एक पैसा पे पेश किया। तो ज़्यादा से लोग जैसे जसोदरा में जाते थे और दपारन में उतना लोग नहीं जाते थे, इसलिए कि एक पैसा एक टिकट से दो फिल्म आपको देखने को मिलता था। यह है उन दिनों का कहानी। तो मैंने बताया फिल्म फर्स्ट का एक दो लाइन में एक दो बातें तो मैं चॉइस करके रखा हूँ। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानो, चाहे तू मानो या न मानो। फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग है जिसमें जितेंद्र एंड बबीता ने काम किया।

0: ना माने फिर भी एक चीज मांगता हो, एक चीज मांगता है हम तुमसे पहली बार।
1: एक चीज मांगते हैं।
2: क्या
0: चीज है?

विष्णु का पुजारी किशोर कुमार एंड आशा भोसले, दोनों के मीठे आवाज़ों में यह सॉन्ग भी आपने सुना। दोस्तों, जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, बात यह है कि बॉम्बे में 3 हफ्ता लगातार जितना सिनेमा है सभी सिनेमा में राजेंद्र कुमार का फिल्म सिर्फ पेश किया गया। तो बीच में राजेंद्र कुमार घर पर बैठा था और उसका धर्मपति बीबी का सहेली घर पर आया, तो ये दोनों बैठ कर बातचीत कर रहे थे। तो राजेंद्र कुमार ने कहा अपन बीबी से धर्मपत्नी से कि क्यों ना आप लोग चला जाता हो एक सिनेमा एक पिक्चर जाके देख लो घर पर बैठे हुए हो। तो उसका धर्मपत्नी जो है उसका बीबी जो है राजेंद्र कुमार के, वो कहा कि कौन सिनेमा कहाँ पर हम जाए फिल्म देखे, सभी सिनेमा में तो तोड़ फिल्म आपका फिल्म पेश है। तो इन्हें मालूम नहीं था कि 3 हफ्ता लगातार सभी सिनेमा बॉम्बे में जो है सिर्फ इनका फिल्म पेश किया। तो वहीं से इसका पद्धति मिला, इसका नाम पड़ा जुबली कुमार। तो जुबली कुमार का एक दूसरा फिल्म गोरा और काला जिसमें हेमा मालिनी के साथ वो काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग लता एंड मुका, नाइटी मुकेश एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दोनों के आवाज़ में।

है हमेशा धीरे धीरे बोलना, इसलिए कोई सुन ले आपका दिल का बात जो है। इतने कमजोर मत बनो, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

दिले यार फिल्म का नाम है किशोर राय एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी, दोनों के आवास में एक गीत अभी आप सुन रहे थे, फाह हिंदुस्तानी पर आप चुन है। और अब की बार दोस्तों ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, फिल्म दो रास्ते का सॉन्ग।

रेशमी सुल्फे इन्हें देखकर जी रहे थे कभी। सेक्स बॉम्ब राजेश खन्ना, दोस्तों मुमताज काम किया राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में दो रास्ते। मुमताज शुरुआत किया फिल्म में काम करने का, तो दारा सिंह के साथ लगभग 10 फिल्म बनाए मुमताज। तो जब दारा सिंह की फिल्म कम बने लगल तो मुमताज इंडिया ओवरसीज नहीं बॉलीवुड का जो फिल्म था इंडियन फिल्म्स, तो उसमें ये शुरुआत किया दूसरे फिल्म में काम करने को। तो लेकिन फिल्म जो डायरेक्टर थे इन्हें काम पे नहीं लेना चाहते, कहा कि ये तो दारा सिंह के साथ झगड़ा लड़ाई का फिल्म में काम किया और लव स्टोरी में ये काम नहीं कर पाएगा। फिर भी जब आया जोर तोर से फिल्मों में तो लोग घबरा गया दोस्तों। लगातार लगभग 6 या 7 फिल्म बनाया जो एक बॉक्स ऑफिस निकला। सभी फिल्मों से ये फिल्म भी दो रास्ते एक हिट फिल्म था मुमताज का। लव इन टोक्यो 6 का स्पेशल, आप जानते हैं जॉय मुखर्जी का कमाल था उस समय। जॉय मुखर्जी आशा के साथ या आशा परेख के साथ फिल्म में काम किया। सायोनारा का मतलब क्या होता है दोस्तों?

0: सयोनारा।
1: सयोनारा के बाद किसी ना किसी से कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, बात सही है या नहीं? किसी ना किसी से कभी न कभी और कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जब दिल है, छोटा सा दिल है, तो उन्हें देना पड़ेगा। जब दिल आप देंगे तो दूसरा दिल आपको मैसेज हो सके और बड़ा दिल आपको मिल जाएगा और प्यार भरा दिल मिल जाएगा। लेकिन जब दिल तू सैनिक रहे, दिल तू दबाए के रखिए, न बटिए तो कैसे चली भाई लोग, हम लोग चाहे बाट के खाए के। तो जब दिल है तो उसे दिल दिल से मिला कर देखो, आप जानते हैं, तो मिला ले उससे तो दिल, दो दिल जब मिल जाएगा तो दो दिल जब मिल जाएगा तो चार हो जाएगा दोस्तों। इन एंड इन इज फील, आप जानते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ हमेशा ज़्यादा रहता है। फिल्म का काश्मीर के कली, श्यामी कपूर का कमाल था फिल्म में।

हर एक काम जो रिव्यू किसे लेकर आना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर से न्यू सी फन तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सी पर। आपको तार करना है

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगे के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

Nieuw song met Piskarunga Dosto, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यू बीन नौटियाल

प्यार है नया एहसास है आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल के आवाज़ों में, मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कर हूं मैं।
1: कक्कर हूं मैं, क्या बात है। हाइड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

आप ही का हैप्पी स्पेशल फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम राम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकसानी

मिस्टर तसीफ बख्स, और तसीफ बख्स आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स कर्म डॉन।

0: किवार दोस्तों, ये मुक्सी वाले ऐसी नहीं, ये मिसिक मुक्सी है और मिसिक मुक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।
1: The world's number one soca chutney band. You're Dilly Nedan, bigging up the boy DJ Rahman Entertainment to the world.

एक फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कर्मा अनु ताकि मिनो लोबी यू, सुमा ताकि मिनो लोबी यू, मिलो बी यू थ्रू।

मेक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

मथुरा में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

का व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए, क्या बात है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग। सर तो तैयारियां कर दिया है, उतार के बिग दिया है दोस्तों। डांस कर रहा, लेट्स डांस।

ग्रेट मेमोरीज, ग्रेट मेमोरीज, ताम ताम भोजपुरी सॉन्ग चलेगा। आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो, वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ, साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है।

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान, रफी सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

आपकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरी अम्मा के बार निहरी सिविल शास्त्र के बात है जब ये सिनांदेश आया और उसी समय पर एक बार बना था जिसे पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरी मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पटा पटा।

0: हेलियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one.

काना जाने ऊंच नीच कलाना जाने जांच सरस्वती माता जी जे हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी

तो हमारे दोस्तों, हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे लोग, हम एकदम से चला जाते हैं, शुरुआत करते हैं और हम चलते हैं अपना सूरीनाम देश में। सूरीनाम देश की ओर हम जाते हैं, हमारे मौसी मौसा नानी नाना, देखो भैया रोफ ओफरफाल के ओर तो हम तो जाते। एक आदमी भैया सूतला और सूतले में होकर 12,000 यूरो से बन रूफ कर ली से नानी। तो बोलिए चोरवन कैसे जानिस के रेमिया 12,000 यूरो लेके सूतल है। तो एगो 25 बरिस के आदमी एल जो है रविवार के यानी सोनदा के रात के कोकोबिया वेख में सूरीनाम देश में ओके सबन ओवरफॉल करी से भैया खमस कर द क्रिमिनलन खवापन 12,000 एरो से चोरवन धनी होइगे भैया। और ये आदमी रोवे है मोड़ी पे हाथ धर के बोले है फरनूमन वर्ड कि उस सुतल रहा अगले सुतली में चोरवन ओके ओवरफॉल करी से ओकर घर में ओकर कवाड़ी तूर के भीतर गए है। और बोले ना द ड्यूरन फन वोनिंग वार वेल देख मार नीड ऑफ स्लॉट तो 12,000 एरो लेके और बिना कवाड़ी तारा कर ले सूते बाटे। तू सोचे मॉरिशियस में बाटे कहा रे भैया तो ऊ देश में बाटे एन फन द लंदन दार ऑफ दिस मोमेंट सो एरख ना हमने द क्रिमिनल एंड दिस सोर्ट रोफर्स मेंशन मिसहैंडलन। एंड आई हैव ऑल हर्ड दैट दिस सोर्ट थिंग इज ook in Guyana gebeurd mensen। Ik heb een vriend van Guyanese afkomst een jaar hè ओ भी बतावे बोले बहुत जबर गायना में भी ऐसे रूफ हुए भैया। और गायना और सरनाम में इतना जबर रूफ हुए द दादस ओवर मिस्टर द हेस्लाख्त ओवर बदरेक करी पिस्तौल से और ओकर 12,000 पैसा जो ओकर नख काशे में रहा ओकर बेदी लगे ओके लेके और सब छग भगे भैया। बोले ना द दांत फॉर लीटन द फरदाख्तन ऊपर से ब्राउन फिश पेस चोर चल गए डॉलर स्ट्रांत में रिक्तन इंदिरा लैंड में सिपाही एकर बारे में ऑब्सपोरिंग फॉर आन होल्डिंग खोजे हैं लेकिन ओके का पियो भैया ब्रोम पे सबन 12,000 से धनी होई गए है नानी। तो ये सब चोरी ऊपर से तुके 12,000 एरो लेके और तू कवाड़ी ना ताला कर ले भैया तू कितना चलाक आदमी बाटे मैं बतिया ये 12,000 वाई कहाँ पाई से वरना लिखल कि बिजनेस करे कि सा कमान है कि नीदरलैंडर है कि बेटरलैंडर एकर बारे में। और ना लिखल देखो दोस्तों हम जाई है रोनी ब्रंसवाइक की ओर। रोनी ब्रंसवाइक अबॉब के का बोले है फ्रीज साम फिन दैट एनडीपी लीडिंग स्टर्क मुस सैन uitgekomen tegen uitspraken van रोनी ब्रंसवाइक। हाँ एनडीपी के पार्लियामेंटारियर जो है जेनिफर फ्रिट्साम एनडीपीयर है बोले उफेनी करेगा कि बहुत यामर द लीडिंग फॉर हर पार्टी जो एनडीपी के लीडर जो है बोले नित रियाखेर जो ऐश्वर्य अबोब लीडर और बोले ऊपर से कोवालिसी पार्टनर है ब्रंसवाइक रोनी ब्रंसवाइक की एनडीपी के 18 सीटल है मैं 18 सीटल बोले अफक्लोपन फरकीसिंग में नीट हीफ को वोनन जो बोले 18 सीटल से बोले ना जीता ली बात अबॉब यानी कि रोनी ब्रंसवाइक बोल ले रहा तो एनडीपी के पार्लियामेंटर जेनिफर फ्रिट्साम बोले एनडीपी बोले एकर बारे में बोले एक को अंतोत ओके ना दीज मैं भैया कभी कभी सच्चाई के आगे तो कौन चीज ये वहां मुंह लड़ावे भाई एगो इरलक बात है दन इस मुइलक अन यईस्त अंतोत खीफन रोमल अंतोत काए आल्टेड खीफन अननोडक रोत्सोई काए वेल हालन में बोले सच्चाई के आगे झूठाई साथ ना देवे भैया एक सेखनी दत दत दत
Brunswick allemaal hier rechts, zeg maar. Ik om algemeen zeg je, je hebt kabitu satchai bolio bhaiya, de admit het rai bat jaiga, baki u ook een tegenspreek, khali onzin kariga, maar waarheid toen akar paiga. Volgens vreedzaam heeft de Paarse Partij de verkiezing wel degelijk gewonnen en moet zij haar positie nadrukkelijk opeisen. Bolega Jennifer Bolehe en na Simons Idusa Jennifer bhaiya, i parlementariër hega vreedzaam ke baanchit hoe he maar janta aur bole de politica sit he uitblijven die verzwakt maar wel aan een verzwakking van NDP, dat inderdaad een verzwakking en ik geef dat toe. En je moet zeggen, want als je het niet zegt, zal het ook zo blijven sudderen. Je bent een vreedzaam, ik erbaan in mijn prebole, want hij is zelf een NDP'er. Ik erbaan in mijn presentator, Jenny Clifton, bij jou Lomburgo. Limburg kan bolen he. Bolen merken op dat er tijden zijn geweest waarin hij ook actief was binnen NDP. En deze Bouters de leiding had. Want Bouters ke NDP ke raha. Limburg ke STV en kamat raha. Or op een apre radio station kolise. En je weet mensen, de meeste media in Suriname zijn politiek gebonden. Als je politiek doet sponsor kreeg. Politiek doet dan ben je geen vrije media, mensen. Dat hebben we heel veel in Suriname. Wel, de vrije media heb je niet, waardoor mensen alleen maar dingen in de voordeel gaan praten van zijn eigen politieke partij. Vrije media is een media namelijk dat je iedereen neutraal zonder enige belang namelijk kan interviewen en je commentaar kan geven. En dat hebben we in Suriname heel weinig, mensen. De meeste media in Suriname zijn politiek gebonden en dan houden ze zijn mond dicht als ze kritieke vragen moeten gaan vragen bij een politieke partij of ergens anders. Op Bologna, ook bij de NPS was dit in de periode van voorzitter Rodes Venetiaan het geval. Partijen kwamen dan sterk uit met een tegenverklaring. Ja, betekent het dus nu dat wel gebeurt en de NDP-leiding het ook nog accepteert vanuit de coalitiepartij, betekent volgens Kemke en de NDP inderdaad zwak. Baba, ja, bouwt zwak, hè. Bolo tegen wat jij pawe hega. Ronnie Brunswijk, John Etrabarka, Bolisega, Kito Atala, Zetel, Leke NDP, toen naar Jitle Bate, want Hamlun Tor Sad Deli Bate, Tapto, hij president van Lebate. En dat is ook de waarheid, mensen. Vreesan heeft de NDP wel de parlementariële meerderheid en moet de partij haar leidende positie binnen de coalitie duidelijk laten gelden. Toe je baantje hoor aan de NDP, bolle de partij heeft het ook, moet ook dat opeisen. Toch maar de janta, je ze bebaant aan plukkohem. Suriname desi Suriname ke samachar ko hum sunate hai. Ab dekho bhai, ek laik bahi ke gail hai, ego badreif hai, u hai Tutli Fo kanaal weg me volgens mij bhaiya hiya likhle Tutli Fo aur kanaal weg na likhle to samme chahi bole ke ichi yuwa hai ga sinmeester Chilcher weg me ego badreif hai Tutli Fo. En hoe heb ik een lijk milke geil he, en ik een Hindustani ke bhaiya. Het lijk is besmeurd met bloed. Koen ook heel erg la. Diverse instanties zijn ingeschakeld. En betawe he, ki houtuin ke, de politie houtuin ke, kerbarim khoje he. Ek Hindustani, jo laatst hoe ik eraf 84 jaar gedmi. Ook een namba Roop Narayan Raghunath bhaiya. I Tutli Fo middenweg me rahat raha. En sanitcher ke 10 tarik oktober ke, u ghar se vertrek bhaiya le. En kabhi loud ke nail he. En bole hega, u gekleed in een rood t-shirt, of een zwarte pantalon, of ook er een belastjai ke milal hai, Tutli Fo me bhaiya go bedrijf lage. To ye baant hai. Hamara Suriname ke te bari duk ke baant hai. To jo parwaar hai, parwaar jo hai Raghunath, aapke duk me radio fahun jarur samil hai. To hamare janta aur aage hum jaela hiya ego
फोटो है भैया, एगो फोटो है, वो मलिच है भाई, वो फोटो ने देखा, टॉयलेट पोत है, एगो फीस बाक है भैया, और फ्लूर तो तीखल करल इतना, नासी गोरे बामी के पाकी अलीच मलिच सब बिगल है, टॉयलेट एकदम मलिच है भाई। तो एकर बारे में बोले जग जरबंधन का बोले है, जरबंधन बोले कार्त स्लेक्ट आर्बेट ओमस्तांदखीने बे डिफेंसी आन, ते ई डिफेंसी के फोटो है भैया। दयाने दयाना लेत जोन है अमीरानी जरबंधन जेनिफर सिमोन के फोटो हुआ दिखावे है, और बोले एकर बारे में तू हमसे बताओ, जो सानितेर हैगा सानितेर हैगा खाई जोन है फिनाशील पोचिसी डिफेंसी कम करतन के, बोले तू ताक कितना स्लख

Bole hega volgen der minder der banden, bole blijkt uit de foto dat de toiletten en bepaalde defensielocatie in zo'n slechte staat verkeren, dat manschappen zelf water moeten showen om deze na gebruik door te spoelen. Daarna zouden de onvoldoende schoonmaakmiddelen beschikbaar zijn om de sanitaire ruimtes hygiënisch te houden. To lantieke tjie bij je defensieke tjie, abbe koi oorlog aanjijgen tep toilet gehad hem in jijf haiw. हसी तो ये बात हमारा डिफेंसी में है डिफेंसी के रीगल से भैया कि जो यूनिफॉर्म में तो के चाहे अपन जूता पुछ करे के चमके के ये यूनिफॉर्म मुझ स्कूल नेचर्स आईसीन और सैनिटर जो हुआ देखियो भैया तो एक किलोमीटर दूर से गंधा है छाड़ भी कर दियो भाई जर बंधन वेल फंड रखेरिंग वीटन ऑफ शाई ऑफ द हुक थे इस फंड ओमस्टन द हिन एल वेलकम हाथ रेखले वर्ड कंट्रोफन ओम द सैनिटरी फोर्सिंग तेरे veren en de structuren schoon te houden te willen bijheren kop chamke bhaiya a toilet me tu bait na sake hai trek na kar paye saban balti se leke ja toilet me bhaiya abbe sri lama hamar kai barisan purana khine raat se chij leke chale hai fooding intelligence standards the sanitary forcing jarbandan bole hai bole khai bhi chahi hu apo vek personnel ke moi se deve ke much kapan spray can focus har hin war dere for forbidden the mal तेजी 12 बजे और बोले हुआ पे मिले के चाहेंगा सवेरे ईटन एंड ड्रिंकन ओख्तन फन वार अन अन फोर आफत हरफतन फरसुक उबेलोन फरहुकिंग ओ फाइनेंशियल पोजीशन फन डिफेंसिव पर्सनल बार्ट है डीएनए लिट सोर्गन और बोले डीएनए लिट फरदीन डिफेंसिव मास्कपन रिस्पेक्ट वार्डेरिक फन बासिस फोर्सिंग तो ये फोटो देखियो भैया तो छांट हुई हम जाए है भैया तेरी पीएल के फोर्स से तरजोर है सोमो हारजो भाई बोले वो उन्हें प्रोजेक्ट बोले मांडलेक्स अफ्लोसिंग फंड $100 यहाँ लिखल है तो सुमो हार जो पर्चा लहूर के पेयल के का बोले के गो वोनिंग प्रोजेक्ट है बोले है मुखल क्रेखन से एक वोनिंग बोले मानलक से अफलोस करी 100 अमेरिकन डाला बोले अफलोस करी पॉल सुमो हार जो बोले है इनिशिएटिव एन इनिशिएटिव opgezet in kader van het 50-jarige bestaan van de partij. O bole sommige hardo bole he. Bole he ga partij zal fungeren. Het project is naar zijn zeggen toegankelijk voor de Surinamers. Surinamers die alleen voor partijleden ke he. Die partijleden he ga usab $100 per maand bhariga. I woning bouw project ke bhaiya. Aur je oise kariye te sowieso. To ke jai sommige hardo ke stem kareke bhai. तब तो देश चाहे चूली भक्कड़ में जाए मैं तो के 100 रुपया करवाए तो चाहे ओके करेगा दत इस अलमाल ने बदूने इधर इन के इनार से एक पार्टी में से दत जो अब मैं मुझ गान स्टेम मैं आज इन द बलंग फन द अलगमीन लंट इस ना वर्ट वेनिक एन आंगदान में से फॉलो सो मोहार जो कुनर के इंटरेस्टेड इन विया एन ओवरइनकम्स में द बैंक फाइनेंशियरिंग आनफ्रागन वोनिंग फॉर गजिरन एन यंगरन द गप्लांड वोनिंगन मुटन ऑन मेयर टू स्लैपकामर ego woonkamer, koekroep, badkamer, toilet, chahinga, somohar, dus stel dat de partij verder wil kijken naar de eerste groep van 100 woningen, gezien de woningbehoefte in Suriname. To i project ke bare mein hega, bole ki, aise tulun kar sako hai. To ye baat hai, hamare pyare pyare, meetha meetha janta. Gayandin haalt uit naar pleine weigering schorsing voor Ramsukul in DNA. Vugt Ablonjano VHP ke fractieleider Asis Kumar Gayandin bole voorzitter hega of bole hega en voorzitter van de Nationale Assemblee ke bole he ukar namba Ifanildo plein ke bole unnamoi handel karisega of bole hega auro bole hega verkeringwa bole naskors karisega handel doen verzoek ki ego korte schorsing de af te wijzen. De schorsing was bedoeld
om VHP parlementariër Kiesje Raamse Kool alsnog de gelegenheid te geven zijn spreekbeurt voor te bereiden nadat de sprekersvolgorde onverwacht was gewijzigd. Bole bina verwacht kere, bole go spreker jona, bole tjua wijzig karte te bole kook even temde, ki bole go chota scoresing de voorbereid kariga, or bole hega gaya din bole se duidelijk

और ये था सविता जीन दोस्तों, जो मेहमान बन के आए इस नाखसों ली जो आपको हम सुना दिया है। तो अभी हम आपके और कुछ गीत को जरूर सुनाएंगे। हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लिख। हाँ दोस्तों, तो तेलवा कब निकरे, तेलवा कब निकरे कि जनता बोले हम अपन जीवन अरमो चलाए थे। एकर बारे में भैया एनपीएस के गो पार्लियामेंटारियर पुतिनी आतोम पाई भैया बोले है गा बोले द्रैखंद आन कोमन द ऑन्टविकलिंग इन द ओली इन खास सेक्टर फर्स्क्रिकल का खफोल्ग होते हैं बन फोर्सरी नाम बोले तेलवा जा निकली गा तो बोले देखिए कितना बड़का बड़का खफोल्ग फर्स्क्रिकल का खफोल्ग हो यो कर बारे में फरंदरिंग कौन क्यों हुई बोले धनी आदमी धनी हो जाए गरीब आदमी गरीब हो जाए। ओकर मतलब ही ऐसे है सुरीनाम बोले सुरीनाम बोले है गा वो फोल्गस हेमसाल द ग्रुप रेकमेंसन क्लेनर वर्डन तरवेल द ग्रुप में आर्मन यही साल ग्रुयन बोले है गा जो जो जो गरीब है और ज्यादा गरीब हो जाएगा। और बोले है गा द क्ले द ग्रुप रेकमेंसन क्लेनर वर्डन बोले है साल फर्स्क्रिकलिक चैन इन सुरीनाम में ओलियन खांस बोले एकर बारे बोले पांच गो होटल बने भैया दस को हाफन बने हैं बोले जो धनी आदमी है रेकमेंस साल क्लेनर वार्डन तरवेल द ग्रुप फंड आर्म में से ग्रोटल साल वार्डन द खुदकोस्त पेसिलेन श्रीनाम सबसे जो सस्ता रहेगा का बोले हैगा इन जगह आदमी के बोले जहां पे बोले जहां मेट लेख्त वातन फरदार द वीक नहीं बोले शुरू हैगा तो ये तक 2000 यूरो से बिकाई के बोले के ओके किन पाई एक बारे में आ तुम पाई बोली से बोले धनी धनी हो जाए गरीब गरीब हो जाए बोले द पॉलिटिक द पॉलिटिकस फॉर द आन कि बोले जो जगह जमीन है ऑन रूरल खुद सुरीनाम में बोले 15% omhoog is gegaan बोले het gevolg hiervan is dat meer mensen het moeilijker zullen hebben। इकर बारे में प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन बोले aangeven kennis कि सुरीनाम में बोले onvoldoende is voorbereid कि ontwikkeling जो 2028 के बाद है worden verwacht। Atom Pai बोले है regering tijdig beleid moet maken om de gevolgen van burgers draagleker te maken। Dosto bole so pleit hai ervoor ki tarifen jo stroom ke hai pani ke hai bole chahega mark comfort chahe vaststel kare ke bole jo subsidie hai uitsluiten worde versterk ki burgers deze tarifen niet kunnen betalen bole verhoog hoi ge hai। और बोले है मैं दी तेईस साल में है चीन है बेई बखरेपन वर है खाद नीर खमाकलक सेन है लंच साल मोई जैन अन देल साल ओकलविकलिंग सेन मार है खदेट लफान मेंशन दी है मुईलकर है बन ओम सिख ते रेड़े इस नीत ओम नार हुईस ते स्क्राइपन। तो ये बात बोले है आतों पाई और तो लोन जानो भैया इतना कर्जा देशवा में हुई गे है 2028 से जे तेलवा निकले देर तक तक तो खाली कर्जा भराई भाई खाली कर्जा भराई और जब कर्जा भराई तो देश कहां से हम लोग के चमकी लातवे होप दस ओंस रखेरिंग अन खुई प्रोग्राम माक में से ओम दित अलमाल खुद ते लाते को लोप और नीत अली मा देंक अत कोम खुद अत कोम खुद अत कोम खुद। Zo werkt het niet mensen, je moet het wel goed gaan voorbereiden. Drive-by shooting, schutters vluchten in twee voertuigen. Bhaiya chalte mein dagawal bhaile Suriname desh mein hamara nani chalte mein dui admi atwar ke bhaiya bole for a warning Leonard Bell straat mein bole hai ga chalte mein atwar ke twee manen se zondag beschoten terwijl zij zich voor een woning aan de Leonard Bell straat in Suriname voor घर के आगे दुई मिला खड़ा रहा तीन मिला चल ऑटो लेके जाए चलते मी सबके दागी से मां सबके मीसी कर दे भैया लैया ना लगल है फोल्क द बस के बारे इंफॉर्मेशन स्कूटन द थ्री मानन बुर्टलिंग्स में द रिवॉल्वर इन द रिक्टिंग फॉर द स्लाक्टोफर बोले द बस की टिकर फ्लुक्टन से टू ई फोर टेकर एक ग्रेस लेक्सस रहा ईएस एन ग्रेस टोयोटा फिट फॉर अ न्यू मॉडल से रीडन वेग इन द रिक्टिंग फॉर सैमुएल फिनोक स्ट्रैट में। तो ये भी भैया देखो सुरीनाम देश में
चलते में भैया घर के आगे खड़ा हुई तो जरूर एमा कुछ रहा हुई सो उमार थोड़ो ऐसे कोई दागी नानी सो उमार ऐसे कोई ना दागी के जरूर एमा कुछ मेद मतभेद भइल हुई तो ये बात ना है हमारे नानी। अब देखो भैया सीडॉर्फ के सब कोई जाने हुए फुटबॉलर हैगा इंटरनेशनल फुटबॉलर रहा हम लोग के नीदरलैंड के नेशनल फुटबॉलर और बोले सीडॉर्फ के परफॉर्म आने का कि हाँ हाईवे पे भैया एगो सीडॉर्फ फुटबॉल फेल्ट है हम बीते हुए साल गए नहीं देखे भाई खाली भूस लगल है डाम कंती भाई का बोली हमने ये स्पोर्ट एंड इट इज सो मोई गमाक मान एंड आई फाइंड इट सो एरग जोंद कि ची वक अंडर हाउ इट इज स्लेक्ट सीडॉर्फ वर्ड होफ ट्रेनर बाय द ब्रासियांस क्लब कोर्टिंटियंस भैया अब सीडॉर्फ जाएगा ब्राजीलिया के क्लारेंस सीडॉर्फ के बाद बतियाला अब ही जाएगा ब्राजीलिया के हुआ के एगो फुटबॉल फरीनिंग है कोर्टिंटियंस लीकल है अन डिग्रेडेशन हो दर 50 यार का आउट इंटरनेशनल इस आंकस्टेल अस होफ ट्रेनर फॉर द क्लब फॉर द मेम्फिस डिपाई एंड सकारिया लिबाई zijn contract loopt tot 2027. तो इतमोली कुछ स्पोर्ट के बारे में तो हम बहुत कम बोलते भैया होकर बारे में और कोई लोग है जो अपना प्रोग्राम को मनाते लेकिन जो न्यूज है तो उसके बारे में हम जरूर कुछ बोल देते हैं हमारे सुनने वालों हमारे प्यारे प्यारे जनता जो आपको हम इस समाचार को रेडियो फाहुन के माध्यम से सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे। हमारे प्यारे प्यारे जनता हम चलते हैं भैया शर्माकारी फिर में तुरंत जानो कितना मछली मर गया होकर बारे में पता चल क्वेक फुएक ओमा रहा अब दे एना ले जो है प्लेन वेल वेटन के फ्रांत वोर्डलक हैगा शर्माकारी फिर में जो उतरा फरखे भइल हां और सिमोन तो बोले रहा कि एगो बदरेफ है एकर बारे में ब्रेंसवाइक बोले रहा बदरेफ बगलिए में मछरिया जिए हैगा तो कैसे जाए के शर्माका मछरी मरल है दो सतीस अलमान ऑन द लिख देंगे चेस सब जिंदा मछरिया ले गए रहा फ्रैंकलिन में कहां गए ऑन द सुक करे कि कैसे से मरल रहा ब्लैक बैल है पनिया शर्माकारी फिर के फरफेल हो गए रहा जे में बहुत ढेर क्विक क्विक रहा भैया। अब एकर बारे में एनपीएस पार्लियामेंटारी इफानेलो प्लेन जो है बोले हम दैलकहित मांगेला ओवर वी फ्रंटवर्डलिक फॉर द फरफेल फॉर शर्माकारी फिर इन सुरीनामे बोले हैज टेल दैट फॉर ओरसाकर मुट ऑफड्राइन फॉर द कॉस्टन फॉर द स्कादे एंड गेवोल्गे फॉर द गेट्रोफन गेमीनस्काप प्लेन रिएगेरे हिरमी ऑफ द फुस्टर पैकेटन दी हेड कैबिनेट फॉर प्रेसिडेंट ही फर्स्टरेक ऑन द गेडुपेर्ड द अप एनमी अब कैबिनेट जाय के खाना पीना पैकेट पठावे भैया बेनलांत में उसे अमदा तो सबके पानी मोरसू हो गए है तब प्लेन बोलेगा उस सब कॉस्ट चाहेंगे वो बदरेफो या कोई के भरे के ये फरांतोर ले कहेगा जोन मछरियन हुआ के रिपोर्ट जोन हुआ फरफेल करी से en hier ben ik zeker eens met meneer Plein. Maar meneer Plein, niet alleen dat, we hebben nog steeds niet duidelijkheid over de andere diefstallen, namelijk en zoals de quick verdwening bij de politie, of ook erbaan in mijn zona, zo afkomen gela, ketra ketra drugs chalge, ketra ketra admi, kees koutuke, politiebureau met z'n chichori hoige, ook erbaan in mijn kabin duidelijkheid, namelijk meneer Plein, ik zou u vragen om die ook namelijk boven water te krijgen. Overlijn, ja, willen we weten wie de slachtoffers zijn, maar ik wil weten wie de dader is. Of willen we hem nog niet slachtoffer waken, hè? Maar hem nog mangelen jannen hoe dat daar was op kostoon barikina. Dat is voor mij een belang. Ibar willen plein, en dat geef ik je helemaal. Willen wie zal de kosten draaien, zei plein in de interview. और बोले है एकर बारे में जेनिफर सिमोन प्रेसिडेंट जो बकेन कर ले रहा बोले है एकर बारे में स्टार्समैन बोले ग्रासाल को बोले चीवा मोर सुकरी से पनिया बोले ने नाम फन बदरेव दैट ऑफ दिस कंसेसी एक्टिव वाज इज एक्ट नीट नॉट बाय द खबर फॉलोस एनपीएस इज इट ग्रोथ बलंग द रेगुलेटिंग दिस इंफॉर्मेशन वेल डील ऑन द डॉर्प्सgemeenschap एंड अंडर इन सी अनसर्टेनिटी सुन बाय लीवन तो बोले हैगा एकर बारे में बोले हम मांग ले दैलकहित एंड आई गिव दिस
genoeg. Ja, negen rengels met bolie zeker. En enkele keer een pakket geven. Deksma, anno, begisma. Die mensen willen waardige burgers zijn. En ze willen daar de regering kom en zeg welke structurele oplossing zijn kan aangedragen. En dan ben ik helemaal eens met de meneer Plein. Op de Kobaya aangelegd brand in pan met Cubaanse bewoners aan de Prinsenstraat. Jabber agi huan legal bhaiya, jabber agi legal he. Aur nikeri mein bhaiya, nikeri mein ek light mila lega, joan bahut gandhat ra, kharaab hoi gara, laas hoi gara, hamari janta. Stank lay polisi na lekham in fair start van ontbinding in nikeri. निकेरी के बांध चीतेगा शनिवार के हुआ सबन ऑन डेक करी से का नारपास्त्रात में फन पैतन पोलनर में एक लाश मिले ले हुआ एक स्कूल है को नातिन स्कूल है जो इन फरकेर द फेयर स्टार फन ऑन बिल्डिंग वाज भैया लोन तो यहां बताए हैगा और खैर ऑब्सकाकी फॉर द सिरनाम से पॉलिसी सिपाही गए हुआ देखी स्ना को बंद करके तो ओकर सब निकारी से फरमुद लगदा द स्टॉफ लको ओफर्स का एनिगे टाइम ऑफ द प्लेक लाग. Hoe lang precies, dat weten die mensen niet. Oh, hier wat hij heeft. Volgens de eerste informatie gaat het lichaam van een ouderte. Bronnen in de westen van Suriname melden van de reactie. Bollega, een ouderte vrouw in kwestie van een chronische ziek zou zijn geweest. Mogelijk houdt haar overlijden daarmee verband met de doodoorzaak. Maar na wat hij zei, naam naar Likele. Kikke hij die ouderte, Hamari, Janta. Maar dukke ook een baant he. Jo, je sabbe cheez milale. Bhaiya, SLM ke baanti phoot ge sab koi oto ke baanti surat raha phoot ja hai. Brom ke baanti, basigri ke baanti. SLM flukh naar Amsterdam, bhaiya. Plainwa jatra Amsterdam. Bokar baanti hai dagge bhai. Haan, hiya dagge hai. Ofer tra khoi ge SLM phino. Na bolila vertraag hoe je maar bolila pino weer vertraag mensen SLM vlucht naar Amsterdam vertraag uitgevoerde na klapbaan gehuurde Boeing 777 kian banti lagai hoi bhaiya sasta plein liho tab ka hoi bole atkan baki thoro khilla raha bhaiya SLM ke flick field pe de gehuurde Boeing ra 772-200ER raha SLM के जो परमारी वो आमस्टरडाम जा है अंडरहाउट करे है 11 तारीख अक्टूबर के ओकर बांती दग्गे भाई और बोले हैगा opgelopen bij de landing op de Johan Adolf Pengel Internationale Airport. Sanderijpe Dagale Bhaiya. Want ja, het toestel door SLM wordt gehuurd. Bollega kon ondanks het incident door de piloot veilig naar de parkeerplaats worden gebracht. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken. Vooral was niet merkbaar voor de passagiers aan de boord. Bolozam Najan Paiske Banti Dagge. To Bout Achabat Ki Achase रुक गए भैया मक्की बांधती आंधी दगे भाई एंड दैट सेड द इंसिडेंट व्हाट कैन gebeuren mensen. Dat kan allemaal gebeuren, maar de onderhoud van de vliegtuigen moet wel goed zijn. Anders krijgen dit bhaiya aap dekho Albina ke aur hum jaila bhai mane ko armi pakad ke ban kari se badrai kari se apan bahin ke o bole hapa bahiniya ke bole didiya to ke hame jaan se maar de ekar bare mein Albina kisi pahi jaye ke badrai king ke pakdi se o batave hega badrai king bhai Albina mein o pakdi se hai sau sein zus an enkele andere familie leden hebben badrai. Obole meld de politie in de oosten van Suriname. 21 september kreeg uit op een adres in Albina. Obole de familieleden vreesden voor hun veiligheid. En schakelden natuurlijk bij Jan Sipahike. Je kon het ook een bedrijf krijgen. Dan moet je zeker de hulp halen van de instanties. Om jezelf veilig te houden. Je baat hai hamari janta. 13 बरिस के लड़का भैया मैं ट्वीक स्टिक बोंद न सिकर है लड़त रहा 13 बरिस के लुंडा भैया सबन ओके भूक भांग नहीं से जानता और ये लड़का के सबन सिपाही ने यानी कि सिकन है इसमें ली के कर दी से
अभी आप लोग को और समाचार को हम सुनाएंगे। हम चलते हैं एक की नवरात्रि का।

और तेरे दरबार में मैया खुशी तो जरूर मिलते हैं। और दोस्तों नवरात्रि का ये स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और यानी हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नवरात्रि सॉन्ग की ओर। नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

अरे माँ, और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते और अगला भजन के ओर हम जाते हैं। वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि सॉन्ग है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाई गई है। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी

अम्बे माँ नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए अम्बे।

ये दिने चढ़ गया रे मेरे अम्बे, और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

और नाचो बेटी नाचो, ये सॉन्ग है मारी जोसी जमीर और ये गीत है नाचो बेटी नाचो और ये है भोजपुरी सॉन्ग। और इसके बाद हम एक और भोजपुरी सॉन्ग की ओर जा रहे हैं, मॉरिशस का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों। तो हमने सोचा कुछ सुनाए, अभी वो जा रहे भैया माया कर ले मेरी जान, सेगा भोजपुरी सॉन्ग है और ये भी है का बोले है भैया मॉरिशस का, हो बूढ़ा मत करो बूढ़ा है शैतान, यहां पर लिखा भैया तो हम बोली बता दी, चलो सिरा जाए।

0: कर ले मेरी जान, कुछ भोजपुरी सॉन्ग आज हम लोग आपको मॉरीशस की सुनाते हैं। मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान, हो बूढ़ा मत करो, बूढ़ा है और वो है शैतान। यहाँ पर गीत के बाद भैया हम ना बोले ला, उसके बाद हम जाते हैं सोना नयोन के को कौन फुलवा, कौन फुलवा, ये भी एक गीत है भोजपुरी का, आओ मिलकर सुना जाए।
1: अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो, अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो, अरे माथा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर

और कोनो फुलवा के ये गीत है दोस्तों, कुछ आज कुछ और आपको हम सुनाते हैं। सोना नयो गमत और कौन फुलवा का ये जोंग है जो मॉरिशस के लोग इस गीत को गाया है और बहुत खूबसूरत से गाया है। तो आज कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आज हम आप लोग को एक घंटा सुनाएंगे और उसके बाद दोस्तों कुछ और सॉन्ग आप लोग को हम सुनाएं। तो हम चलते हैं लंगारों के ओर। लंगारो बॉयस है एगो भोजपुरी का और वो है भी मॉरिशस का। आओ सुना जाए ये क्या गाया है।

0: और हे लंगड़ों के बाद चीत को छोता है। हमारे दोस्तों आज कुछ भोजपुरी सॉन्ग मॉरिशियस को आपको हम सुनाते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। और तो आज हम आप लोग को भोजपुरी जोन से मलामाल करेंगे कि कमरवा के कुछ गीत है दोस्तों। और ये कमरवा में क्या क्या होता भैया आप खुद ही सुनिए।
1: काम करवा

की काम करवा, ये भोजपुरी सॉन्ग था मॉरिशियस का दोस्तों। अब हम चलते हैं एक भोजपुरी सॉन्ग, वो है हमारा भारत का, इंडिया का भोजपुरी सॉन्ग। अब मिलकर उस सुना जाए।

0: प्यार करे खाती चांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होके के चाहिए।
1: अपने आप के बहुत बड़ा आशिक समझ ले, चल तो साबित कर।
2: और ऐसा बड़ा नाचे ना माचिस, ये भी भोजपुरी है, ये है इंडिया का भोजपुरी दोस्तों। और आज हम आप लोग को श्री भोजपुरी ही एक घंटा को सुनाएंगे और उसके बीच में हम जा रहे फिर एक भोजपुरी जो मॉरिशियस का है दोस्तों। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं।

और हेलो कमरिया फुला के, और क्या क्या ये गीत को ये आदमी कितने खूबसूरत के गाकर सुनाए हैं। आओ ये गीत को और सुना जाए।

और मुरिका के कुछ सॉन्ग है दोस्तों। यहां से आपको हम इंडिया का कुछ भोजपुरी सुनाएंगे। पवन सिंह काजल रघवानी का, प्रियंका ने इसमें काम किया है, जोंग फान ने छलकाता हमरो जवनिया।

चल चिखले जवानी, तो जवानी के बाद हम फिर एक सॉन्ग लेकर अभी आएंगे दोस्तों, और वो सॉन्ग क्या है, जोश में आके होश मत गवाइयो।

जूस में आके और जोश में आके और आगे चला हो भोजपुरी सॉन्ग। और ये है हमारा मॉरिशियस का ये गीत है जो राजकमल चिंता मुनि ने गाया है हमारे दोस्तों। यहां से और आगे हम चलते हैं राजकमल की ओर, फूली गिरी।

और चल कर दे थोड़ा प्यार और थोड़ा प्यार न करियो तो दोनों मर जाएंगे। ये काम ना करना भैया, ना करना, मरने वाला बात क्यों करते हैं, जीने वाला काम करो। जैसे किताबों बहुत है, किताबों बहुत है, शाहरुख खान और शिल्पा कहते हैं, आओ सुना जाए क्या कहते हैं।

किताबों में बहुत से चीज लिखा है दोस्तों, लेकिन सिर्फ किताबों में वही नहीं लिखा है। हाँ, आजकल इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं तो, और उस पे नहीं मिलेगा तो टिकटॉक पे आपको मिल जाएंगे। कारण कि हमारा सोशल मीडिया जो है आज आसमान छू लिया दोस्तों। जवान से बच्चे से लेकर और बूढ़े लोग 24 घंटा हुई टेलीफोन में और फिर सोशल मीडिया पे सब रखते रहते हैं। और तो कोई टिकटॉक बनाते हैं, तो कोई फेसबुक बनाते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम पे जाते, तो कोई फोटोशॉप करते हैं, तो कोई क्या क्या करते भैया। लेकिन सब उस सब को देखो तो अपना आँख जो है अपने टेलीफोन में लगाए रहते हैं।

जो दिल को लेकिन नजर नहीं चुराना मेरे सनम। तो ये गीत आप लोग को एक ओल्ड सॉन्ग हमने सुना दिया है और हम अपना यानी अगला गीत की ओर जाते हैं। और कभी कभी लोग भूल जाते हैं सपने साजन की में अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल कहते हैं कि

और मैं भी कभी भूला है और कभी याद करते हैं हमारे जनता, हमारे लिस्टनर्स, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और याद तो करना चाहिए कारण की रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को चलती है, जो हमारा प्रोग्राम दे आप भी प्लस रेडियो पे आप सुन सकते हैं कनाल 5B पे फ्रिक्वेंसी होन द सेस इवन द प्रिंसेस फिर तक मेगा हैश पर, और नहीं कनाल 8 पे भी आप लोग सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो 24 घंटा चलते हैं। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो यहां के ही कांतोर का है, अमिस्त्रासी का है, 07 3 6 5 2 2 4 7, और नहीं हमारा स्टूडियो नंबर है 07 3 6 2 2 0 7 पर आप लोग हर जानकारी के लिए तार कर सकते हैं। और हम चलते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की ओर। फिल्म के नाम है रफू चक्कड़ की ओर हम आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए।

किसी से प्यार करते हैं तो अपना आवास उसके साथ, उसके आवास में मिलाना चाहिए हमारे दोस्तों। और जब आवास मिल गया तो उसको भुलाना भी नहीं चाहिए, ये कहते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अन्नू अग्रवाल, ये कहते हैं।

और आपको हमारा यहाँ से ही है कहते हैं कि दुनिया कभी नहीं भुलाना, कभी कभी चाहत में धोखा हो जाते हैं तो वो दुनिया ही आपके काम आते हैं। हम कल चाहते हैं कि आम की कागज कोरा होगा तो उसका नाम इस पर आपको लिखना चाहिए।

और हमारा दिल भी कोरा कागज का है, और अगर आपको भी होगा तो किसी के नाम उस पे जरूर लिख देना। उसके बाद हम जाते हैं, जो कोई ओढ़नी ओढ़ता तो बोले हमार नानी आजी ओढ़े, लेकिन यहाँ ओढ़नी कुछ और बातचीत हो है जो अलका याग्निक का उदित नारायण आपको सुनाते हैं। हमारी यारो

और ओढ़नी ओढ़ के नचियो तो और मोई लगेगा नानी, यही बतिया हमारा जी नानी बोले है। और हम जाते हैं गीत के ओर, हवाओं ने कहा और क्या क्या ने कहा, आओ मिलकर सुना जाए।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी मैं मिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेर आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

आते हैं, सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जो लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों। और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए श्री प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल वैसे मैं से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं, अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों और हमारे प्यारे दोस्तों। ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

फाहम के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

इंसान उस कल की चिंता में डूबा रहता है जिस कल का कोई भरोसा ही नहीं है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आप सबकी सेविका बबली आसरा। आज फिर मैं एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है बॉलीवुड। हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी बॉलीवुड इतनी बड़ी है कि इसमें इतने महान कलाकार हुए हैं हमारे फिल्मी सितारे। और आज मैं जिस फिल्मी सितारे के बारे में बताऊंगी उसने तो बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और वो है हमारे सबके प्रिय मनोज कुमार जी।

सुनने वालों, आज मैं आपको मनोज कुमार जी की फिल्मों के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके निर्देशक के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगी।

मनोज कुमार हिंदी सिनेमा के एक महान अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, जिन्होंने उनकी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से जाना जाता है। मनोज कुमार जी का जीवन। उनका पूरा नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 इबटाबाद, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ। विभाजन और स्थापन। भारत के विभाजन के समय उनका पूरा परिवार शरणार्थी के रूप में दिल्ली आ गया था। उनकी शिक्षा दिल्ली के हिंदू कॉलेज से बीए की डिग्री करके प्राप्त की।

सुनने वालों, अब हम मनोज कुमार जी की मशहूर फिल्म क्रांति का एक गीत सुनने जा रहे हैं, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म क्रांति का था और ये मनोज कुमार जी की बहुत सफल फिल्म रही और इसमें दिग्गज अभिनेताओं ने काम किया जैसे दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, निरूपा राय, प्रवीण बॉबी और हेमा मालिनी और स्वयं मनोज कुमार जी ने भी इसमें अभिनय किया था।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के जीवन के बारे में बता रहे थे। अब उनके परिवार के बारे में सुनिए। उनके परिवार में उनकी पत्नी जिनका नाम शशि गोस्वामी है और उनके दो बेटे हैं कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। कुणाल गोस्वामी ने फिल्मों में अभिनय किया है और विशाल गोस्वामी ने निर्माण तथा संगीत विभाग में काम किया है। सुनने वालों,

और मनोज कुमार जी के एक भाई राजीव गोस्वामी थे। इसके अलावा भारत पाकिस्तान विभाजन के समय उनके एक छोटे भाई कुकू का दंगे और बीमारी के दौरान बचपन में ही निधन हो गया था। सुनने वालों,

विनोद कुमार जी ने निर्देशक भी किया, निर्माता निर्देशक भी रहे। उनकी फिल्मों में उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम थी। उपकार 1967 यह एक ब्लॉकबस्टर और देशभक्ति से भरपूर फिल्म थी जिसका निर्देशन खुद मनोज कुमार जी ने किया था। इसमें उन्होंने भारत नाम के किसान और सैनिक की भूमिका निभाई थी। क्रांति 1981 यह एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया गया था, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार समेत कई बड़े कलाकारों ने काम किया था। रोटी कपड़ा और मकान 1974 यह फिल्म समाज की आर्थिक समस्याओं और बेरोजगारी पर आधारित थी। यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। पूरब और पश्चिम यह 1970 में आई। इस फिल्म में भारतीय संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। सुनने वालों, अब हम गाने की ओर बढ़ते हैं। अब गाना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से लिया गया है।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से था, ये भी मनोज कुमार जी की एक बहुत अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर, जीनत अमान, खुद मनोज कुमार जी ने।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने कुल 55 फिल्मों में काम किया और मनोज कुमार जी की पहली फिल्म 1967 में आई जिसका नाम था फैशन। इस फिल्म में उन्होंने महज 19 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग भिखारी का छोटा सा किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता कई फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक महान पहचान बनाई।

हेलो, मनोज कुमार की बतौर अभिनेता आखिरी फिल्म मैदानी जंग 1985 में आई थी, जबकि बतौर निर्देशक उनकी आखिरी फिल्म जय हिंद 1999 में आई थी। सुनने वालों।

सुनने वालों, ये जो गीत आपने सुना ये फिल्म पूर्व और पश्चिम से था, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी सुनने वालों। इसमें भारतीय सांस्कृतिक और पश्चिम संस्कृति का मेल जोल था कि इसमें मनोज कुमार जी ने दिखाया कि भारतीय सभ्यता कैसी होती है और पश्चिम की सभ्यता कैसी होती है, पूर्व और पश्चिम। और इसमें अभिनय किया था स्वयं मनोज कुमार जी ने, सायरा बानो जी ने और कामिनी कौशल जी ने। हर फिल्म में उनकी प्रिय माँ होती थी कामिनी कौशल जी, वो उनको इतना पसंद करते थे कि हर फिल्म में उन्होंने कामिनी कौशल जी को अपनी माँ बनाया।

सुनने वालों, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है ना। ऐसे मनोज कुमार जी को भी बहुत चीज़ें पसंद थी, जैसे वो अपनी फिल्मों में आईने का इस्तेमाल करते थे। उनकी फिल्मों में शीशे बहुत रहते थे, शीशे रहते थे और वो अपने मुंह के ऊपर हाथ जरूर रखते थे, वो भी उनका एक स्टाइल था। एक उनकी हर फिल्म में मुंह के ऊपर हाथ रहता था।

और उन्होंने अपने फिल्मों में भारतीय सभ्यता को बहुत उजागर किया, दुनिया को दिखाया कि भारतीय कैसा देश है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसके रहने वाले कैसे हैं। वहाँ पर ज़्यादातर किसानों का देश है भारत, वहाँ पर किसान कैसे काम करते हैं, और ये चीज़ें उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत दिखाई और देशभक्ति का बहुत उपयोग किया, क्योंकि वो देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी देशभक्ति को बहुत दिखाया फिल्मों में सुनने वालों।

अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी मनोज कुमार की जीवनी के बारे में। मनोज कुमार जी के पास कुल कितनी संपत्ति थी? विकिपीडिया के अनुसार उनके पास करीब कुल संपत्ति $20 मिलियन, करीब 170 करोड़ रुपए नापी जाती है। सुनने वालों, संपत्ति से जुड़ी मुख्य बातें, कुल नेटवर्क उनकी संपत्ति 170 करोड़ है। कमाई का स्रोत, फिल्मों में 50 साल का लंबा और सफल कैरियर बतौर अभिनेता, निर्देशक और लेखक है। प्रमुख संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार उनके नाम पर गोस्वामी टावर नामक एक बड़ी इमारत भी है। आधिकारिक डेटा, हालांकि उनकी संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक और पक्का सार्वजनिक डेटा मौजूद नहीं है और यह आंकड़े मीडिया रिपोर्ट्स व सेलिब्रिटी नेटवर्क वेबसाइट पर आधारित हैं। सुनने वालों,

सुनने वालों, ये भी मनोज कुमार जी की एक बेहतरीन फिल्म थी। उनकी हर फिल्म में देशभक्ति का गीत जरूर होता था और जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है तो टीवी पर उनकी फिल्में जरूर दिखाई जाती हैं सुनने वालों। और जब तक उनकी फिल्म ना दिखाई जाए तब तक समझो कि टीवी वालों का दिन अधूरा है सुनने वालों।

सुनने वालों, मनोज कुमार जी ने जिन फिल्मों में काम किया उनमें प्रमुख हैं घर बसा के देखो, गृहस्थी, हरियाली और रास्ता, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, शहीद पूर्व और पश्चिम, वो कौन थी, शोर, गुमनाम, हिमालय की गोद में, शहीद, उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

पत्थर के सनम, पूर्व और पश्चिम दो बदन, क्रांति, सन्यासी, ये भी उनकी प्रमुख फिल्में थी सुनने वालों।

0: सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।
1: हेलो एचआर, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग,
1: मीट मिस्टर भारत।
2: हेलो,
1: इलाहाबाद से आए।
2: इलाहाबाद?
3: आप कहाँ के रहने वाले?
2: लंदन का। मैं इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता।
1: भारत, मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस में तुम्हारे नाम का खत आया।
3: गंगा भाभी का है गुरुजी का, क्या लिखा? आप सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।
1: ओम जब मैं सब बनारस से पढ़ता था, उसे भी इलाहाबाद से गुरुजी के खत आया करते।
3: आप गुरुजी से कभी नहीं मिले?
1: नहीं, जिंदगी में कभी इलाहाबाद जाने का मौका ही नहीं। तुम्हारे पिता ओम से संबंध था। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें गोली का निशाना बना दिया। मेरे घर वाले लाहौर में थे, मुल्क के बंटवारे में सब के सब कत्ल कर दिए गए। उसके बाद कभी इंडिया जाने का ख्याल ही पैदा नहीं। खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
3: अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: माई फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
3: जी,
2: और नहीं तो क्या। यहाँ देखो, हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
3: वो देश आपका भी तो है।
2: काली मत दो।
3: जी,
2: जो देश दूसरों के रहम और कर्म पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं।
3: मेरा तो है।
2: होगा, तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूं जो मदद देता है। तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सके और लोग चांद तक पहुंच गए, है कोई मुकाबला?
3: जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है।
2: सर झुकाने पर फक्र करते हो, है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो, जीरो एंड जीरो।

जीरो दिया मेरे भारत ने, मैं भारत की बात सुनाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ। सुनने वालों, मैं भी भारत की रहने वाली हूँ, इसलिए भारत की बात सुनाती हूँ। पहले लोग सोचते थे कि भारत में कुछ नहीं है, भारत एक गरीब देश है, लेकिन अब वही भारत ने कितनी उन्नति की है। सुनने वालों, भारत अपने मेडिकल क्षेत्र में और चांद पे भी पहुंच गया। भारत उनके डॉक्टर्स इतने बढ़िया हैं, दवाइयाँ इतनी बढ़िया हैं। अब भारत पर अपने मोबाइल बनते हैं, उन्होंने चाइना से लेने छोड़ दिए मोबाइल। सुनने वालों, और मनोज कुमार की फिल्मों के गाने इतने अच्छे, इतने मधुर संगीत के होते थे सुनने वालों, कि उनको जितनी बार सुने मन करता है सुनते ही जाएँ, सुनते ही जाएँ। और ना सिर्फ गाने, और जो गाने वाले भी थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सुनने वालों, इस गाने को गाया महेंद्र कपूर जी ने, और ये फिल्म थी पूरब और पश्चिम।

सुनने वालों, मैं आप सबको मनोज कुमार जी के बारे में बता रही थी। मनोज कुमार जी को भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए पद्म श्री जो 1992 में उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया और राजकीय सम्मान दिया गया। सुनने वालों,

मनोज कुमार जी को भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री और 2016 में श्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सुनने वालों,

सुनने वालों, मनोज कुमार जी की मृत्यु 4 अप्रैल 2025 को मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल मुंबई में हुई। तब वह 87 साल के थे। सुनने वालों, अभिनेता मनोज कुमार जी ने अंतिम सांस उसी हॉस्पिटल में ली। सुनने वालों,

सुनने वालों, अब मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ और अगली बार फिर किसी दूसरे फिल्म स्टार, एक्टर, हीरो या हीरोइन के बारे में आपको उनके जीवन के बारे में जरूर बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

शब्दों को संभाल कर बोले, क्योंकि शब्दों में बड़ी ताकत होती है। कड़वे वचन तीर के समान घायल करते हैं, इसलिए हमारी वाणी में हमेशा प्रेम और मिठास होनी चाहिए। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

वक्त्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से प्रारंभ हो गया है। आज कुछ अच्छे अच्छे विषय लेकर के हम सब आपके साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ बबली आसरा जी और अभी जुड़ने वाले हैं अनुराधा चंद्र जी, जो भारत से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं।

कहते हैं एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जैसे कि अभी आपने सुने, एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ ये सोचकर खो देंगे। और क्या सोचकर खो देंगे? कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। इसी बात पे अभी अनुराधा जी हम सबको संदेश रखने वाले हैं, पर उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना वही सुंदर सा गीत। हर बार की तरह कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े।

0: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज जो मैं आपसे बातें करना चाहूँगी तो वो जीवन के बारे में है। देखिए, जीवन नामक इस नाटक में जन्म से लेकर धरती पर होने वाली हर घटना को कर्म नियंत्रित करता है, यानी कि जो हम जैसा जीवन में काम करते हैं, अच्छा या बुरा, वो नियंत्रित करता है। जो भी कुछ हो रहा है वह भाग्य नहीं है। हम जो बीज बोते हैं उसका फल हम ही खाते हैं। हमारे सभी कर्म कर्म द्वारा दर्ज किए जाते हैं और वे एक एक करके हमारे सामने प्रकट होते हैं। देखिए, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें स्वीकार करना सीखना होगा। अगर हम विरोध करेंगे, रोएंगे, आसमान की ओर देखेंगे और पूछेंगे क्यों, तो हम केवल दुखी ही होंगे। देखिए, जीवन में हमें बहुत से ऐसे हमारे जीवन में बहुत ऐसे क्षण आते हैं और बहुत ऐसी बातें होती हैं जहाँ हमें अच्छा कुछ करना चाहिए, पर अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए फिर हम रोएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो आपके कर्म पर है, आप कैसा कुछ कर रहे हैं। जैसा बोएंगे तो वैसा उसका फल आपको मिलेगा। संजय जी, मैं आगे बढ़ना चाहूँगी, क्यों ना एक गीत हो जाए, फिर मैं आगे सबको और इसके बारे में बताना चाहूँगी।
1: बिल्कुल अनुराधा जी, और एक गीत मैंने चुन करके रख दिया है कि जीवन भर ढूंढा जिसको, तो सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: सुनने वालों, आज का हमारे शीर्षक जीवन जो अनुराधा जी हम सबको सुनाने वाले हैं। आगे के ओर बढ़ने से पहले अनुराधा जी, क्यों ना इस पे भी थोड़ा से ध्यान दिया जाए कि कहने वाले कह गए हैं कि चरित्र और वस्त्र कितने भी चमत्कार हो, देखने वाला तो बस सिर्फ दाग ही पे ध्यान देते हैं। आगे का संदेश क्या है अनुराधा जी?
1: तो चलिए आगे बढ़ा जाए और बताएं कि आगे हम जो बात कर रहे थे उसको हम आगे चलाते हैं। जो लोग वास्तव में खुश हैं, वे जीवन को समझते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कोई भगवान स्वर्ग में नहीं बैठा है जो हमें दुख दे रहा है। उन्हें एहसास होता है कि कर्म से कोई गलती नहीं होती, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, आप जो करते हैं वही आपको वापस मिलता है। इसीलिए अगर जीवन में कुछ हो रहा है तो हमें उसे स्वीकार करना होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बेशक हमारे पास अभी अपने कर्मों को बदलने का विकल्प है, हम बदल सकते हैं, तो यह हमारे ऊपर है, हम बदल सकते हैं। एक बार जब हम नए कर्म करते हैं तो वे नए कर्म बन जाते हैं और वे नए बीज बन जाते हैं जो नए ताज़े फल देते हैं। तो अगर हम लगे रहें, हम लगातार, हमने ठान

0: जरूरी है कि हम हमें वो करना है तो हम अच्छे कर्म हमने सोच लिया कि हमें करना है तो हम अगर हम ठान लें कि हमें यही करना है तो हम कर सकते हैं। अगर हमने ठान ली हम अच्छा करेंगे तो ये सोच लीजिए कि हमें पता है हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन के बगीचे में दुख बढ़ रहा है तो हमें खुद को छोड़कर किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है तो वो हमारे कर्म की वजह से है, अगर हम जैसा अच्छा जैसा काम कर रहे हैं। और अगर हमें दुख की प्राप्ति हो रही है तो ये सब भी ये हमें सोच लेना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं। संजय जी मैं आगे बढ़ूं, क्यों ना एक गीत हो जाए?
1: बिल्कुल अनुराधा जी, मैं दूसरा गीत खोज करके रख चुके हैं प्लेयर पर, तो दूसरा गीत की ओर लता जी की आवाज़ में।

इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसे होता है उपयोग करने के लिए, किंतु लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। आप सुनते रहना जीवन का संदेश, जो अनुराधा चंद्र जी हम सबको सुना रहे हैं।

0: कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा दौड़ा ही जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती है, जैसे सुख, शांति और सुकून। और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो 24 घंटा आपके साथ है। जिंदगी जीने के अनेक तरीका हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्ट मिले और दूसरों को कष्ट ना हो। अनुराधा जी, अपना संदेश को आगे रखिए।
1: अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो लोग खुश हैं वे अपेक्षा नहीं करते, वे स्वीकार करते हैं। क्योंकि जब आप अपेक्षा करते हैं तो आप दुखी होते हैं। यानी कि जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ऐसा होगा और वो ना हो तब आप दुखी होंगे। लेकिन जब आप स्वीकार करते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप आनंद और शांति के साथ रहते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में हमारे जीवन में बहुत दुख सुख आते हैं, तो या तो आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उसको स्वीकार कर लें, उसमें ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, प्राप्ति होगी कि ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। अगर आप ये सोचें कि नहीं, मेरे जीवन में ये ऐसा दुख क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे को खुशी ही मिलनी चाहिए, मैं खुश रहूं, मैं खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा गलत, अगर आप इसी को आप ऐसा सोचते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। पर अगर आप उसको स्वीकार कर लें कि हाँ, ये पल, देखिए हर चीज दुख और सुख तो सब चलता है साथ में। ये तो नहीं कि आपके साथ सुख ही सुख मिलेगा, ऐसी दुख भी होएगा, तो ये सब जीवन का, जीवन में आएगा ही आएगा। दुख सुख तो एक एक गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ साथ चलते हैं। तो जब आप इसको स्वीकार कर लें कि ये जीवन में आएगा, तो आप उसमें आपको ज़्यादा शांति का एहसास होगा। स्वीकृति बुद्धिमानों के लिए एक उपहार है, क्योंकि वे समझते हैं कि स्वीकार करना ही खुश होना है। तो जो बुद्धिमान है वो समझ जाता है कि हमने इसको स्वीकार कर लिया, वो खुश रहेगा। परंतु अगर आप जो स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि जो कुछ भी होता है उसे भी खुशी से स्वीकार करते हैं, देखिए ये है कि अगर जो नहीं भी होता है ना आपके जीवन में, अगर उसको भी आप स्वीकार कर लें, देखिए ये मेरे तरीके से नहीं हो रहा, क्योंकि जीवन में जो आप चाहते हैं वैसा तो कभी नहीं होएगा। आप हो सकता है कोई एक जॉब जा रहे हैं, या आप कुछ ऐसा, आपको आपके जीवन में आप चाहते हैं ऐसा हो कि भाई मेरा मेरे जीवन में मेरे बच्चों का ऐसा हो या ऐसा हो, पर वैसा नहीं जाता जीवन में, तो आप निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। पर उसको अगर स्वीकार कर लें कि देखो जो है सो ऐसा ही होएगा, तो जहां आपने स्वीकार करा तो आप का मन हल्का हो जाएगा और आप एक तरह से आपको शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। देखिए जीवन में ऐसी कुछ चीजें हुई होती हैं जो इतनी सुखद नहीं होती हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, हम नहीं चाहते वो हमारे जीवन में हो, अच्छा नहीं होता, तो हम वो तो ऐसे समझते हैं कि हो सकता है भी हमारे पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर, जब इंसान करता है ना कि भाई हो सकता है कि ये ऐसा हुआ है तो हमारे पिछले जन्मों का ये उसके वजह से हुआ है, है? तो वो एक तरह से उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब एक बार स्वीकार हो गया कि हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो उन ऐसे लोगों को कष्ट नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है। और जीवन में दुख आते हैं तो उसको भी वो स्वीकार कर लिया है, खुशी रहेगी। देखिए हर समय तो जीवन में खुशी नहीं मिलेगी, तो हर चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। खुश रहने के लिए व्यक्ति को कर्म के नियम को समझने में निपुण होना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वीकार करना सीख सकता है। और जहां आपने अपने जीवन का जीवन के बारे में समझ लिया और उसको स्वीकार कर लिया, तो आपका जीवन बहुत अच्छा कटेगा। आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, कोई अपेक्षा ना करें कि मेरा जीवन ऐसे ही होना चाहिए। जैसा भी है उसको आप करें और अपना जीवन अच्छा अच्छे तरीके से जिए। देखिए हम में से बहुत से लोग कड़वाहट भरी जिंदगी जीते हैं। हम अतीत में मतलब पुराने हमेशा पीछे पिछला क्या हुआ उसमें हम जीते हैं और पछताते शर्म भी करते हैं और अपने आप को एक तरह से गिल्ट की फीलिंग लाते हैं। अपराध बोध यानी गिल्ट से भरे रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत करा है और आपके पास हमेशा मन में वो बैठ जाता है कि मैंने ऐसा करा है, इससे हमें क्या मदद मिलेगी। जो हो गया सो हो गया। अब आप पिछले पुराने समय में तो नहीं वापस जा सकते, तो जो हो गया आप उसकी पुरानी बातों को भूल जाइए। उस बातों को भूल जाना चाहिए, उस पर उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए जो हो गया, क्योंकि आप पीछे तो नहीं जा सकते। जीवन में जीवन तो आगे ही चलता रहता है। आप पुराना जो बीत गया तो उसमें हमें आगे ही बढ़ना होता है। हम इसे बदल नहीं सकते, हम अपना पुराना वो बदल नहीं सकते। कल हमें आगे का सोचना होता है, लेकिन क्योंकि कोई स्वीकृति नहीं है हम दुखी हैं, क्योंकि हमने उसको स्वीकार नहीं करा है कि जो हम पिछले हमारे जीवन में क्या हुआ हमने उसको स्वीकृत नहीं करा, तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम दुखी हो जाते हैं, हमारा मन हमेशा वो वैसे हमारा जीवन भी वैसे ही बन जाता है। हम हर समय अपने आप को स्ट्रेस में दुखी होकर हमेशा हम दुखी रहेंगे। जो लोग कर्म को समझते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। वे जानते हैं कि अतीत खत्म हो चुका है, जो हमारा पास था वो खत्म हो चुका है। सो वो क्या करते हैं, ना केवल वे बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, बल्कि वे जो भी कार्य करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, फिर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। हालांकि जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं वे अपने दुखों से चिपके रहते हैं और खुशियां उनसे दूर हो जाती हैं। पर जो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि चलिए जो हुआ वो भगवान की मर्जी है, ऐसा है तो इसमें हम आपके ऊपर आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तो वो अपना जीवन उनका बहुत अच्छा करता है। तो ये देखिए जीवन की ये आपके ऊपर है कि आप कैसी अपनी सोच रखते हैं। चलिए संजय जी एक और गीत हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं।

0: चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या आप वाकई खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों, अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और उसके लिए आभारी होने की आदत डालें। आभारी मतलब उस पर बी ग्रेटफुल। ईश्वर पर भरोसा रखें, भगवान पर भरोसा रखें कि और उस उन पर भरोसा रखें कि वह हमेशा जो वो करेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। सार्वभौमिक नियमों पर विश्वास रख करें। भगवान आपके लिए इस संसार के लिए में हम सबके लिए कर रहे हैं, हर इंसान के लिए वो आपके लिए अच्छा ही है। तो याद रखें, आप भगवान पर भरोसा हमेशा रखें, जीवन से सारी कड़वाहट निकाल दें। आपके मन में जो भी कुछ ऐसे कोई सोच है या आपका मन दुखी है, आपकी कड़वाहट जीवन में, आपकी बहुत बातें होती हैं बीते हुए जीवन में जो आपके साथ घटी हैं, वो अपने दिमाग से निकाल दें। जो कुछ भी हुआ वो हो गया, अब वो बदल नहीं सकता और आप उसको बदल नहीं सकते। ये अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत एक बड़ी प्राप्ति है, क्योंकि हम इसी विश्वास के साथ अपना ये सोचते रहते हैं कि उसी पुराने पलों को, पुरानी चीज़ों को हम उसको बार बार सोचते हैं मन में और उससे अपना मन दुखी करते हैं कि ऐसा हुआ। तो देखिए, जो पुरानी बात गई उसको हम बदल नहीं सकते, परंतु आगे जो होने वाला है उसको हम जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि वो आने वाला है। तो इसलिए पुरानी बातें हैं आप भूल जाएं, पुरानी जीवन से सारी कड़वाहट अपने जीवन से वो सोच है वो खत्म कर दे। देखिए, जो हो गया तो आप वो तो बदल नहीं सकते हैं, वो खत्म हो गया है। इसलिए दूध के टुकड़े रोइएगा नहीं, है जो कहते हैं ना, जो दूध गिर गया, कहते हैं ना दूध गिर गया अगर, तो आप रोकर उस पर क्या फायदा कि आप कहें कि भाई देखो गिर गया, वो वापस तो आप ग्लास में नहीं डाल सकते हैं। तो जो गिर गया तो इसलिए आप उस पर ना रोएं, बिना विरोध के स्वीकार करें और अपने जीवन में ये स्वीकार करें कि जो हो रहा है उसको जैसा है वो ठीक है, और मुस्कराएं, खुश रहें। यह वर्तमान को बदल सकता है, क्योंकि जैसा अगर आप मुस्कराएंगे, खुश रहेंगे, तो ये आपका वर्तमान मतलब यानी कि प्रेजेंट मोमेंट है, जो प्रेजेंट आप जीवन जी रहे हैं वो बदल देगा। तो ये आप ही के लिए अच्छी बात है कि वो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा और आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, आपका फ्यूचर और अच्छा कर सकता है। तो अगर आप खुश रहना सीख लें, पुरानी बातों को भूल जाएं और अभी खुश रहें, तो आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो भी अच्छा कटेगा और उसकी वजह से आपके आने वाला कल भी आपका अच्छा हो जाएगा। आपके जो भविष्य को उसका जीवन भी आपका सुखमय हो जाएगा, खुशी से भर जाएगा। लेकिन अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं अपने जीवन में जो आपके साथ चल रहा है वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसका विरोध करते हैं, तो आप एक दुखी जीवन जी रहे होंगे, क्योंकि आपने वो एक्सेप्टेंस नहीं करी है, आपने उसको स्वीकार नहीं करा है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप हमेशा अपने लिए ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं अगर आप पुरानी बातों को लेकर हमेशा अपने मन में बैठे रहेंगे और जैसा उसको सोचेंगे कि ये जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक है और आप इसमें दुखी रहेंगे। तो ये सोचिए, तो अगर आप ये पुराना बातें सोचते रहेंगे तो आपका मन भी दुखी होगा, बिना शांति और आनंद के आपका जीवन कटेगा, ना आपको शांति मिलेगी ना आपको कोई सुख मिलेगा। इसलिए आज ही आप अपना मन बना लें और संकल्प लें कि जो कुछ भी होगा उसे स्वीकार करेंगे, यह जानते हुए कि यह आपका कर्म है और आप जीवन नामक इस नाटक का आनंद लेंगे। तो ये जहां आपने स्वीकार कर लिया जो चल रहा है, ये हमारे जन्मों जन्मांतर के जो हमारा जीवन रहा है, हमारे जन्म रहे हैं, तो उसका ही जो हमने अच्छा बुरा जो करा है उसी का हम कर्म भोग रहे हैं। तो एक बार स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन अच्छा कटेगा और आप अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, आगे का जीवन अच्छा बना सकते हैं, ये सोच कर क्या कर कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आज आने वाला पल आपका अच्छा कटेगा। तो संजय जी आइए एक और गीत हो जाए।
1: बिल्कुल, एक और गीत हो जाए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। संदेश जो आज का है कि जीवन का दुख सुख